सुप्रभात। एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। आज दिन शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 19, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:59 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है।

0: And that is the end of this news bulletin.
1: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। सुबह के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें।

कृषक मित्रों जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम में बातें करेंगे झारखंड में पाई जाने वाली मछलियों की किस्में और उनके पालन की तैयारी के बारे में। किसान भाई बहनों, झारखंड में नदी तालाब डैम की वजह से मछली पालन के लिए मौसम और पानी दोनों बढ़िया हैं। झारखंड में पाई जाने वाली जो प्रमुख किस्में हैं वह है कतला, रोहू, मृगाल और नैनी। आइए जानते हैं कि तालाब की दृष्टि से कौन कौन सी मछलियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है कतला, पानी की ऊपरी सतह पर रहती है और तेजी से बढ़ती है। दूसरा है रोहू, बीच की सतह पर रहती है और बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तीसरी है मृगाल नैनी, जो नीचे तल में रहती है और कीचड़ साफ करती है। तीनों को यदि एक साथ पालते हैं तो एक एकड़ में 40 से 50 क्विंटल उत्पादन हो सकता है। सिल्वर कार्य प्लैक्टोन खाती है, पानी साफ करती है। ग्रास कार्य घास खाती है, तालाब की घास कंट्रोल करती है। और कॉमन कॉर्प जो है वो हर तरह के पानी में चल जाती है। झारखंड की मांगुर मछली जो है वो कम पानी में भी रह सकती है और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक प्रति एकड़ कमाई देती है। पंगेशियस यह 8 महीने में 1 किलो तक बढ़ती है और बायोप्लॉक में भी इसका हम उत्पादन कर सकते हैं। तिलपिया जल्दी बढ़ती है और गिफ्ट तिलपिया सबसे तेजी से बढ़ती है। पबदा तेंगरा लोकल बाजार में 400 से 600 रुपए किलो तक बिकती है। मछली पालन की तैयारी करने के लिए क्या क्या चरण होने चाहिए, अब हम इसकी बातें कर लेते हैं। इसके 3 चरण होते हैं कृषक मित्रों। मछली पालन के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है तालाब की तैयारी, जुलाई से अगस्त इसका अच्छा महीना माना जाता है। कीचड़ सफाई, 6 इंच से ज्यादा कीचड़ हो तो उसको निकाल लेना चाहिए। चूना 200 से 250 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। कीटाणु मरेगा और पीएच भी ठीक होगा। और पानी भरना, 1.5 से 2 मीटर तक पानी रखें। दूसरा चरण है खाद और बीज डालना। गोबर खाद 10,000 किलो प्रति एकड़ 15 दिन पहले डालें। बीज का चयन कर रहे हों तो 3 से 4 इंच का स्वस्थ बीज लें। 8,000 से 10,000 बीज प्रति एकड़ महत्वपूर्ण होता है। बीज उपचार अगर करना हो तो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में 2 मिनट डुबोकर डालें, बीमारी इससे नहीं लगेगी। और तीसरा चरण है रोज का देखभाल। खाना क्या देना चाहिए, चावल का चोकर, सरसों की खल्ली 1:1 के अनुपात में देनी चाहिए। शरीर के वजन का 2 से 3% देना चाहिए। जाल चलाना, हफ्ते में 2 बार जाल चलाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। पानी की जांच करनी चाहिए हर महीने में। पीएच का मान जरूर देखें और पीएच 7 से 8 के बीच का ही रहना चाहिए। मत्स्य विभाग से नीली क्रांति योजना में 40% तक सब्सिडी मिलती है। तालाब निर्माण कर सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, चारा भी खरीद सकते हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क कर आप इस विषय पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों कहते हैं ना कि साफ पानी, सही बीज, समय पर खाना, यही तो है मोटी आमदनी का जरिया। किसान भाई बहनों, किसी भी जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के मत्स्य पदाधिकारी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली मछलियों की किस्में और उनके पालन की तैयारी, इसी विषय पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी रखें अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार, आपका दिन शुभ हो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। FM 102.4 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से, और अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनाना और स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा। आपके जीवन में अधिक स्नेहिल रिश्तों को जन्म देगा, नए कार्य और जीने का एक नया बेहतर स्थान दिलाएगा, यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। जो लोग खुद से, अपने स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, वे ना तो अपने साथ और ना दूसरों के साथ कुछ गलत करते हैं। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजियां हैं। ये था चिंतन। FM 102.4 MHz पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग, और प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

सुबह का एक नया सूरज जब अपनी हल्की गर्माहट लिए पूरी ब्रह्मांड पर अपनी आभा बिखेरता है तो उसके सुनहले किरण के कोमल स्पर्श से पूरी तरह खिल उठती है। शांत बहते नदी की धाराओं में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। पक्षियों का कलरव हर दिशाओं में गूंज उठता है। हमारा सोया अंतर मन नई ताजगी के साथ जाग उठता है और अपने कर्ता के प्रति श्रद्धा भाव से झुक जाता है। तो आइए आज के मंगलमय दिन की शुरुआत करें भक्ति गीतों से, और पहले सुने ये देशभक्ति रचना।

आप सुन रहे थे भक्ति गीत, कलाकार थी लता मंगेशकर। इसी के साथ हमारे ये कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। और अब सुनिए रामचरितमानस।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

सुबह के 7 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 में।

हम आपको बता दें श्रोताओं, सुबह 7:10 पर सुगम संगीत की कार्यक्रम में आनंद लेंगी गजलों का कलाकार होंगी आपिदा परवीन। सात बजकर 20 मिनट पर लोक गीतों के कार्यक्रम में सुनेंगे भोजपुरी लोक गीत, कलाकार होंगे गणेश पंडित और साथी। 7:35 पर बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि में सुनेंगे आधुनिक गान, कलाकार होंगी आनंदिता गंगोपाध्याय। 7:50 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आज सुने डॉक्टर निशा यादव से राजेश कुमार की बातचीत, प्री मेच्योर बेबी जरूरी देखभाल इस विषय पर।

सुबह 8:45 का समय होगा गांधी चर्चा का। 9:05 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सुरंजना। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही गायिका के गाने। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे विदुषी किशोरी अमोनकर के ख्याल गायन का। राग होगा देशकार। सुबह दस बजकर बीस मिनट पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दिन के 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का।

दोपहर 12:05 पर होगा कार्यक्रम भावगीत या शीर्षक गीत। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे विदुषी गिरिजा देवी के ख्याल गायन का। राग होगा पूर्वी। दिन के 1:20 और 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

दिन के 3 बजे सुनना न भूलें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे ठुमरी गायन का। 3:45 पर कार्यक्रम झारखंड के लोक गीतों में आनंद लेंगे उरांव लोक गीतों का। कलाकार होंगे सोमराय तिर्की और साथी। संध्या 4:02 पर लुत्फ उठाएंगे कव्वाली का। कलाकार होंगे इकबाल अफजल

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब सुगम संगीत के कार्यक्रम में आनंद ले गजलों का कलाकार है आबिदा परवीन।

आप सुन रहे थे गजल, कलाकार थी आबिदा परवीन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब लोकगीतों के कार्यक्रम में आनंद ले। भोजपुरी लोकगीतों का कलाकार हैं गणेश पंडित।

आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थे गणेश पंडित और साथी। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 MHz पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग, और अब बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि में आनंद लें आधुनिक गान का कलाकार हैं आनंदिता गंगोपाध्याय।

आप सुन रहे थे आधुनिकांत, कलाकार थी आनंदिता गंगोपाध्याय। इसी के साथ बांग्ला गीतों का ये कार्यक्रम सुरांजलि यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग। और अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुने डॉक्टर निशा यादव से राजेश कुमार की बातचीत प्रीमैच्योर बेबी जरूरी देखभाल इस विषय पर।

0: हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा यादव। डॉक्टर साहिबा, प्री मेच्योर बेबी हम किसे कहते हैं और उसकी देखभाल किस तरह से किया जाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि प्री मेच्योर बेबी किसे कहा जाता है। जब प्रेगनेंसी 37 वीक्स के पहले ही टर्मिनेट हो जाए, मतलब 37 वीक्स के पहले बच्चा पैदा हो जाए, तो उसे हम लोग प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में इसे अब 20 वीक पे ले आया गया है। प्री मेच्योर बेबी अगर 20 वीक के बाद भी होता है तो उसको वो लोग प्री मेच्योर नहीं कहते, क्योंकि वहां पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि 20 सप्ताह के बाद भी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको वो लोग अच्छी तरह से बचा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी 37 वीक्स के पहले अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसे प्री मेच्योर बेबी कहा जाता है।
0: उसकी देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए?
1: सबसे पहली बात की प्री मेच्योर बेबी पैदा आखिर होता क्यों है।
0: अच्छा, हाँ।
1: तो ये इस पे बहुत सारे कारण है। अगर माँ रेगुलर चेकअप्स करा रही है तो वो कारण डॉक्टर पता करके उसका इलाज कर सकता है। जैसे है कि बच्चेदानी में या उसके रास्ते में इन्फेक्शन के कारण प्री मेच्योर डिलीवरी होने का चांस रहता है।
0: अच्छा।
1: दूसरा, अगर बच्चेदानी में कोई भी अबनॉर्मैलिटी हो उससे भी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकता है। या डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, और भी बहुत सारे इलनेस है जिनके कारण की प्री मेच्योर डिलीवरी होता है।
0: क्या क्या कठिनाइयां आती है
1: जब प्री मेच्योर बच्चा पैदा लेता है? तो उसके सारे ऑर्गन्स ही कमजोर होते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे उसका लंग्स कमजोर होता है, वजन तो कम होता ही है बच्चे का, साथ में उसका जो स्किन है वो भी पूरी अच्छी तरह डेवलप नहीं किया रहता है, लिवर कमजोर होता है, उसके जो ब्लड सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स उसके टूटने की ज्यादा संभावना होती है।
0: अच्छा।
1: बच्चा जब जन्म लेता है और उसका रेड ब्लड सेल्स टूटेगा तो बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा ब्लड में बढ़ जाती है और लिवर के कमजोर होने के कारण वो बिलीरुबिन डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता है, वो खत्म नहीं हो पाता है।
0: अच्छा।
1: और जॉन्डिस डेवलप करता है बच्चे में। जब बच्चा जन्म लेगा उसे ऑक्सीजन की कमी होती है, वो सही ढंग से सांस नहीं ले पाता है क्योंकि उसका लंग्स कमजोर है। और ऐसे बच्चों को अगर ज्यादा ही कमजोर है तो उसे एक इंक्यूबेटर में रखना चाहिए या वार्मर में रखना चाहिए। जॉन्डिस होने पर फोटोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है।
0: उसके बाद अगर बच्चा को घर लाया जाता है तो महिलाएं किस तरह की देखभाल आमतौर पर करें उसे, ताकि वो उसका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे?
1: अच्छा। जैसे जो प्री मैच्योर बच्चा होता है सबसे पहले तो वो उसे दूध पीने में प्रॉब्लम होता है, वो माँ का स्तनपान नहीं कर पाता है। तो जब तक कि वो अपने से दूध नहीं ले पाए तब तक तो उसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ता है। एक बार जब बच्चा घर आ जाए तो माँ को जितना जल्दी जल्दी हो सके अपना स्तनपान बच्चे को कराना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध से बेहतर और दुनिया में कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज कि बच्चे को हमेशा गर्म रखना चाहिए। अगर वे गर्मी का भी समय है तो बच्चे का चमड़ा पूरा डेवलप नहीं होता है, चमड़े से ही गर्मी पैदा होती है।
0: अच्छा।
1: शरीर में तो बच्चा जो है वो जल्दी ठंडा होने का डर रहता है।
0: अच्छा।
1: तो उसे गर्म रखने का सारा उपाय करना चाहिए। हाँ, जैसे जाड़े में है तो उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि बच्चा कैसे गर्म रहे। जैसे रूम में वार्मर होना चाहिए या फिर घर में आप चूल्हा जोड़ के रखे घर के अंदर, हाँ जो भी साधन हो उसे गर्म करके रखना है बच्चे को। बहुत तरह का इन्फेक्शन होने का डर होता है बच्चे में। जैसे बच्चे को अगर थोड़ी भी सर्दी लगे, खांसी लगे, इमीडिएटली जो भी बच्चे के डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है।
0: तो श्रोता, आपने सुना कि प्री मेच्योर बेबी की देखभाल हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आपने जो उपयोगी जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे डॉक्टर निशा यादव से राजेश कुमार की बातचीत प्री मैच्योर बेबी जरूरी देखभाल इस विषय पर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
3: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
5: FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर होगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केन्द्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि

0: मंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना

0: उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण एमओयू। राज्य में आएगा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलको और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स ने दूसरे और आखिरी दिन झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में 14 महत्वपूर्ण निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए राज्य में करीब 99,639 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन निवेशों से जिंदल स्टील और गूगल क्लाउड के सहयोग द्वारा राज्य में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
1: इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है, और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी मुलाकात की और राज्य में विश्व स्तरीय स्किल सेंटर, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में दीर्घकालीन साझेदारी और निवेश बढ़ाने की गहरी रुचि व्यक्त की है। केंद्र सरकार के जीरो कोल लीकेज पहल के तहत सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बल ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर करीब 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया। इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज कर कई वाहन जब्त किए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र ने टेविल्स ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिले को मिलाकर एक संयुक्त विशेष टीम बनाई गई है। डीजीपी ने अवैध हथियारों की तस्करी रोकने, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच और लगातार गश्त करने पर जोर दिया है। रांची में ऐतिहासिक रथ मेला की तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं निश्चित करने का निर्देश दिए। यह पारंपरिक रथ यात्रा आगामी 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है।
2: लोग साल भर इंतजार करते हैं कि रथ यात्रा आएगी और फिर 10 दिवसीय यहाँ रथ यात्रा प्रारंभ होगी, फिर गुड़ती मेला होगा। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोग यहाँ आते हैं। उनकी सुरक्षा, उनके आवागमन, उनके लिए शौचालय, हर तरह की व्यवस्था खड़ी हो।
0: रांची महिला महाविद्यालय के 76वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महुआ माझी ने शिक्षा को जागरूक नागरिक और सक्षम नेतृत्व के निर्माण का माध्यम बताया। उन्होंने शिक्षा में डिग्री के साथ साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सुशील प्रसाद और एमडी साहिद अलम ने जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का दौरा किया। मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पहुंचे इन अधिकारियों ने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण किया। दोनों राजनयिकों ने संस्थान के विश्व स्तरीय शोध और औद्योगिक नवाचार की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और

0: फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, JSLPS और आवास योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। बैठक में मानव दिवस सृजन, कूप निर्माण और लंबित भुगतानों के त्वरित निष्पादन पर चर्चा हुई। इस दौरान कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के ओरमांझी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। सांसद ने अधिकारियों को म्यूटेशन प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व कार्यों का समय पर निष्पादन करने तथा पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
1: जमीन दलाल हैं चाहे माफिया है, पदाधिकारियों से मिली भगत करके गलत तरीके से रिपोर्टिंग करा करके वो जमीन को हस्तांतरण करने का काम करते हैं, दाखिल रजिस्ट्री कराने का काम करते हैं, जिसका परिणाम देर सवेर ग्रामीण को बहुत खराब भुगतना पड़ता है। इसलिए आए थे अंचल पदाधिकारी से कहने के लिए कि जिनका खर्ता प्लॉट में जो त्रुटियां हैं उस त्रुटि को जिस किसान का जिस ग्रामीण का शिकायत है उसको तुरंत ठीक करने का काम कराए।
0: रांची के शौर्य सभागार में कल 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DGP तदाशा मिश्रा शामिल हुए। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मोनिता के ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है। विभाग का लक्ष्य लोगों को बेहद सहज तरीके से पासपोर्ट उपलब्ध कराना है।
2: 2012 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मूल एम था डिजिटलाइजेशन तकनीकी कर। तो आज आप देखते हैं कि पासपोर्ट सेवा पूरी तरह डिजिटलाइज्ड है और आज 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर।
0: रांची नगर निगम ने राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। रातू रोड से हरमू चौक तक सड़क और फुटपाथ से अवैध दुकानों और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से हटाया गया। निगम ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते। रांची के नेपाल हाउस प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। अनाय खलको और विशाखा थापा ने स्वर्ण, वायु तिर्की ने रजत तथा कृपा राणा ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार द्वारा 14 महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य में 99,639 करोड़ का निवेश होगा, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगेगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिल्डर के यहाँ लाखों की चोरी करके दूसरे घर में घुसे गार्ड हवाई फायरिंग से भागे। हिंदुस्तान लिखता है, रांची के कारोबारी की 85 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। दैनिक जागरण के शब्द हैं, JSCA स्टेडियम में भगदड़ व तोड़फोड़ मामले में 100 से अधिक 150 अज्ञात पर प्राथमिकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स में झारखंड सरकार ने किए 14 महत्वपूर्ण MOU। राज्य में आएगा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्र सरकार की जीरो कोल लीकेज पहल के तहत CISF ने झारखंड और बंगाल में चलाया विशेष अभियान। 428 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के दिए कड़े निर्देश। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुमला जिले का किया दौरा। मनरेगा और आवास योजनाओं की जमीनी प्रगति जांची। और 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। अनाय खलको और विशाखा थापा ने हासिल किया स्वर्ण।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

गांधी जी का संदेश था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। सादगी, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सीमित उपभोग अपनाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। महात्मा गांधी के पर्यावरण संबंधी विचार आज भी बहुत प्रासंगिक माने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति और परिवेश के साथ संतुलित जीवन पर जोर दिया। यद्यपि उस समय पर्यावरण संरक्षण शब्द इतना प्रचलित नहीं था, फिर भी उनके विचारों में प्रकृति, सादगी और संसाधनों के संतुलित उपयोग का स्पष्ट संदेश मिलता है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। ऐसे समय में महात्मा गांधी के विचार अत्यंत प्रासंगिक दिखाई देते हैं। उनके जीवन दर्शन में प्रकृति संरक्षण, संतुलित विकास और सादगीपूर्ण जीवन का गहरा संदेश मिलता है। उनके विचार आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की आधारशिला माने जाते हैं। गांधी जी प्रकृति को केवल संसाधनों का भंडार नहीं मानते थे, बल्कि उसे मानव जीवन का अभिन्न अंग समझते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध सहयोग और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। वे कहते थे कि यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखे तो पृथ्वी सभी की जरूरतें पूरी कर सकती है। वो सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक थे। उनका मानना था कि अत्यधिक उपभोग और विलासिता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। वे स्वयं अत्यंत साधारण जीवन जीते थे और लोगों को भी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का उपयोग करने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि इससे संसाधनों की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और अनावश्यक उपभोग पर रोक लगती है। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। इसलिए आवश्यकता और लालच के बीच अंतर समझना जरूरी है। आज लोग अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने और उपभोग करने की दौड़ में लगे हैं। इससे प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं और ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। गांधी जी का संयम का सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार बन सकता है। गांधी जी ग्राम स्वराज के समर्थक थे। उनका विचार था कि गांव आत्मनिर्भर हो और स्थानीय स्तर पर उत्पादन करे। इससे स्थानीय उत्पादन से परिवहन कम होगा, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण घटेगा जिससे पर्यावरण संरक्षित रहेगा। वैसे छोटे उद्योग पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। उन्होंने चरखा और खादी को केवल आर्थिक साधन नहीं बल्कि स्वावलंबन और पर्यावरण अनुकूल जीवन का प्रतीक बनाया। वो बड़े उद्योगों और मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग के विरोधी थे। उनका मानना था कि अत्यधिक औद्योगिकरण प्रदूषण को बढ़ाता है, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है और मानव श्रम का महत्व कम करता है। वे ऐसे विकास के पक्षधर थे जिसमें मानव और परिवेश दोनों का हित सुरक्षित रहे। आज कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जल स्रोत भी औद्योगिक कचरे से दूषित हो रहे हैं। गांधी जी ने बहुत पहले ही इन खतरों की ओर संकेत कर दिया था। उन्होंने स्वच्छता

स्वच्छता को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। वे कहते थे कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। यही वजह है कि वो स्वयं सफाई कार्य करते थे, लोगों को स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते थे, गंदगी और अस्वास्थ्यकर वातावरण का विरोध करते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता से बीमारियां कम होंगी, जल और भूमि प्रदूषण घटेगा, साथ ही स्वस्थ वातावरण बनेगा। आज का स्वच्छ भारत अभियान भी गांधी जी के विचारों से प्रेरित माना जाता है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, वे सभी जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति दया और करुणा का भाव रखते थे। उनका संदेश था कि पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का विनाश मानवता के विरुद्ध हिंसा है। आज जैव विविधता संरक्षण और पशु अधिकारों के विचार गांधी जी की सोच से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इस तरह अहिंसा का सिद्धांत भी कहीं न कहीं पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि गांधी जी का दृष्टिकोण था कि वर्तमान पीढ़ी अपनी जरूरतें पूरी करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। आज विश्व कई पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई और जैव विविधता का नाश। इन समस्याओं का समाधान गांधी जी के विचारों में देखा जा सकता है। यदि हम सादा जीवन अपनाएं, सीमित उपभोग करें, प्रकृति और परिवेश का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें, तो पर्यावरण संरक्षण संभव है। विद्यालयों और समाज में गांधी जी के पर्यावरण संबंधी विचारों को अपनाकर बच्चों में प्रकृति और परिवेश के प्रति प्रेम विकसित किया जा सकता है। जल और ऊर्जा संरक्षण की आदत डाली जा सकती है, प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सकता है और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सकता है। महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि दूरदर्शी चिंतक भी थे। उनके विचार मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने सादगी, संयम, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और अहिंसा के माध्यम से ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जो आज के पर्यावरण संकट का प्रभावी समाधान बन सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम गांधी जी के सिद्धांतों को केवल पढ़े नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाएं, तभी परिवेश और पर्यावरण संरक्षण में हमें सफलता मिल सकती है। गांधी जी के परिवेश और पर्यावरण संरक्षण संबंधी विचार, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर कुछ जानकारी। और अब आइए सुनते हैं बापू के प्रिय भजन का कुछ अंश।

इसके साथ ही कार्यक्रम गांधी चर्चा का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। अब मुझे यानी शिखा कोरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर।
1: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 296-0445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के निर्माण तक विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत

0: द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री इन तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। खामनेई की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। उत्तराखंड से हमारी संवाददाता ने मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि राज्य के कई जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा की चेतावनी है।
1: मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस चेतावनी के मद्देनजर रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार जिलों में आज सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
3: 2 नॉरिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
2: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना।

कार्यक्रम सुरंजना में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार करें आपकी दोस्त नेहा का सप्रेम नमस्कार। आज के दिन कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक ही गायिका के गाने, तो हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है गायिका रेखा भारद्वाज पर। फिलहाल बातों से पहले सुनते हैं उनकी आवाज में सजा ये गाना।

रेखा भारद्वाज का जन्म 24 जनवरी सन 1964 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही इन्हें संगीत का बड़ा शौक था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी रेडियो। जी हाँ श्रोताओं, उनके घर में सुबह से ही रेडियो बजना शुरू हो जाता था। बचपन में भले ही वे संगीत समझ नहीं पाती थी, लेकिन आनंद जरूर लेती थी। रेडियो पर बजता संगीत धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क पर छाने लगा और वे उन्हें गुनगुनाने लगी। उनके माता पिता ने जब उनकी प्रभावशाली आवाज को सुना तो उन्होंने संगीत सिखाने का निर्णय लिया और उन्हें पंडित अमरनाथ के अधीन शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के लिए भेजना शुरू किया। थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत ने न केवल उनकी आवाज बल्कि उनकी आत्मा को भी आकार दे दिया।

0: বাকি
1: बारह साल की उम्र में ही वे अपने आवाज की छटा बिखेरने लगी थी। उनकी आवाज में ठुमरी, ख्याल, गजल सभी सजीव हो उठते और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर रह जाते।

आवाज की विशेषता है श्रोताओं, लो पिच। यही विशेषता उन्हें उनकी मंजिल तक ले पहुंची। 2002 में उनकी पहली गजल एल्बम इश्क अविश्का निकली, जो काफी हद तक सफल भी रही। इसके बाद उन्हें मौका मिला फिल्म चाची 420 में। उसके बाद गॉड मदर, जहां तुम ले चलो, मकबूल जैसे फिल्मों में गाने का मौका मिला। लेकिन उन्हें पहचान मिली 2006 में आई फिल्म ओमकारा से। गाने के बोल थे नमक इश्क का। इस गाने की अपार सफलता के बाद इन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। ठुमरी, भजन, गजल जैसे लोक गीतों से लेकर हर रंग के, हर भाव के गानों में उन्होंने अपनी कलाकारी की छटा बिखेरी है। कला में योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई उत्कृष्ट सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है।

0: और इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे आपकी दोस्त नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद ले विदुषी किशोरी अमोनकर के ख्याल गायन का। राग है देशकार।

आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन, राग था देशकार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया।

0: अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi, along with Australian Prime Minister Anthony Albanese, visited the iconic Melbourne Cricket Ground today. The visit highlights the growing role of sports diplomacy in India-Australia relations. The discussions between both the leaders focused on cricket cooperation, sports infrastructure, athlete development, knowledge sharing, the IPL-BBL partnership and collaboration ahead of major global sporting events, including the 2032 Brisbane Olympics and India's 2036 Olympic bid.
2: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: न्यूजीलैंड इज सेलिब्रेटिंग मातारिकी द मैओरी न्यू ईयर, अ टाइम ऑफ होप, रिमेम्बरेंस एंड न्यू बिगिनिंग्स। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बिगिन हिज हिस्टोरिक 2-डे विजिट टू न्यूजीलैंड, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन नियरली 4 डेकेड्स। द कोइंसिडेंस ऑफ दीज 2 इवेंट्स हैज एडेड अ स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द विजिट, विद मेनी सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, रूटेड इन शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। India has strongly condemned conflict-related sexual violence, describing it as a tool of war, terrorism, torture and political repression used to subjugate communities, suppress dissent and inflict human suffering. Speaking at the UN Security Council open debate on conflict-related sexual violence, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador P. Harish, said such violence continues amid a prevailing culture of impunity and India strongly condemns such heinous acts. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has announced the formation of a 7-member committee headed by retired Supreme Court Justice

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुरपुर देखा किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत

0: में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक तथा भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थी। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा भी करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। ऑकलैंड से हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर वे बेहद उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: न्यूजीलैंड में समय आशा, स्मरण और नई शुरुआत का प्रतीक माओरी नववर्ष मातारी की मनाया जा रहा है। इसी शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड की अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। मातारी की उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पड़ाव भी है। ये केवल दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात ही नहीं बल्कि दोनों देशों की संस्कृतियों, परंपराओं और साझा आकांक्षाओं के संगम का प्रतीक भी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। ओमान यात्रा पूरी करने के बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ गया था। खामनेई की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। मशहूर वेल्श गायिका और गीतकार बोनी टायलर का कल पुर्तगाल के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। टायलर के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की और बताया कि इस वर्ष मई में हुई उनकी आंत की सर्जरी के बाद उनका इलाज चल रहा था। बोनी टायलर का मूल नाम गेनर सुलिवन था। उन्होंने संगीत जगत को कई सुपरहिट गाने दिए जिनमें इट्स आर द हार्ट और होल्डिंग आउट फॉर द हीरो काफी लोकप्रिय हुए। 80 के दशक में आया उनका लोकप्रिय गीत टोटल एक्लिप्स ऑफ द हार्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुआ।

0: बोनी टेलर के करियर के 3 ग्रैमी नॉमिनेशन में से एक बार वो इसी गाने के लिए चुनी गई थी। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल

0: मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल भी आज खेले जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। उधर ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मुकाबले में कल रात इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में भारत के धीरज बोमदेवरा और कीर्ति शर्मा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए हैं। अब कांस्य पदक के बीच कंपाउंड स्पर्धा में भारत ने पहले ही एक पदक पक्का कर लिया है। भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच चुकी है।
1: ब्रिटेन के कई सांसदों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती अशांति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमलों में कई नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। इस क्षेत्र में सख्त लॉकडाउन, कर्फ्यू और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। इस हमले में ब्रिटिश नागरिक सहित कई लोगों की मृत्यु हुई है और नागरिक घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विश्व दर्पण समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के लिए करें जरा सा इंतजार।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
3: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
5: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
8: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
9: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
8: बातों मुलाकातों के साथ
9: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
9: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
8: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।

गब्बर इज बैक इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था चिरंतन भट्ट ने और गीत लिखा था मनोज यादव ने।

बैंग बैंग इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, बेनी दयाल और नीति मोहन की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था विशाल शेखर ने और गीत लिखा था विशाल ददलानी ने।

एक्शन रिप्ले इस फिल्म का गीत आपने सुना। के और तुलसी कुमार की आवाजों में गीत लिखा था अरशाद कामिल ने और संगीत निर्देशन

शापित फिल्म का ये गीत आपने सुना आदित्य नारायण की आवाज में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन किया था चिरंतन भट्ट ने।

फिल्म का नाम था हीरोपंती। आवाज थी मोहित चौहान की, गीत लिखा था कौसर मुनीर ने और संगीत निर्देशन किया था साजिद वाजिद ने।

बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजों में आपने सुना ये गीत चुलिया गया फिल्म हीरोइन से। संगीत निर्देशन था सलीम सुलेमान का, शब्द रचना थी नीलेश मिश्रा की।

0: इसके गीतकार और संगीतकार थे आर्गो। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों तथा भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक।

0: यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
1: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:05 हुए हैं, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: Hood.
1: नमस्कार, आदाब और स्नेह भरा सलाम। आप सभी का दिल से स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां बातों का होगा खूबसूरत सफर, संगीत का होगा मधुर साथ और मुस्कुराहटें होंगी हर पल आपके साथ। मित्रों, बदलाव ही जिंदगी का नियम है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं और इन्हीं बदलाव के साथ इंसान भी आगे बढ़ता है ना? या यूं कहें, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो इस विषय पर चर्चा और तफसील से हम करेंगे। उससे पहले इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक शानदार गीत के साथ। तो सुनिए आनंद फिल्म का प्रेरणादायक ये गीत, जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए।
1: मन्ना डे की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जिंदगी के उतार चढ़ाव और परिवर्तन को बेहद खूबसूरती से दर्शाता ये गीत। गीत लिखा था योगेश ने और तर्ज बनाई थी सलील चौधरी ने।

दोस्तों, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशियां दस्तक देती हैं तो कभी मुश्किलें, लेकिन हर दौर हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। सोचिए, अगर पेड़ अपने पुराने पत्ते ना गिराए तो नए पत्ते कैसे आएंगे? इसलिए बदलाव से डरिए मत, उसे अपनाइए। कई बार बदलाव हमारी इच्छा से नहीं, परिस्थितियों से आता है। नई नौकरी, नया शहर, नई जिम्मेदारियां या जीवन के नए रिश्ते, शुरुआत में सब कठिन लगता है, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाता है। बदलाव हमें सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। आज तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों की सोच जो है वो बदल रही है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए, वो है हमारी इंसानियत, हमारे संस्कार और हमारे रिश्तों की गर्माहट। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता।

लेकिन मजबूत इंसान हर समय आगे बढ़ता रहता है। हर सुबह हमें ये याद दिलाती है दोस्तों कि एक नया दिन नई उम्मीद लेकर आता है। अगर कल अच्छा नहीं था तो आज बेहतर हो सकता है। जिंदगी हमें रोज बदलने का मौका देती है। जरूरत सिर्फ एक सकारात्मक सोच की है। आज की इस चर्चा के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं जिंदगी से जुड़ा एक और खूबसूरत सा गीत।

मित्रों, हर दिन की तरह आज का दिन, आज की तारीख भी बहुत खास है। आज है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, जो हर वर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हम आपको बता दें क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल पर निर्भरता कम करके सौर, पवन और जल विद्युत जैसे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए जागरूकता फैलाना। जरा सोचिए, अगर एक दिन बिजली ना हो, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए या ऊर्जा के सारे साधन अचानक रुक जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। सुबह की शुरुआत से लेकर रात की आखिरी रोशनी तक हर पल ऊर्जा हमारे साथ चलती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम ऐसी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। इन्हीं विचारों के साथ आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस की। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें ऐसी ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए जो स्वच्छ हो, टिकाऊ हो और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोत न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा भी दिखाते हैं। मित्रों, ऊर्जा की बचत केवल बिजली का बिल कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। कमरे से निकलते समय अगर जरूरत ना हो तो लाइट और पंखा जरूर बंद करें, एलईडी बल्बों का उपयोग करें और सौर ऊर्जा को अपनाना और जरूरत के अनुसार ही बिजली को खर्च करें। ये छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, ये बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आज का दिन हमें ये भी सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वो प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और ऊर्जा संपन्न भविष्य देना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में अनिल पांडे का लिखा जतिन ललित का संगीत बद क्या कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत।

0: मित्रों, बातें तो अभी और बहुत बाकी हैं, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और लेकर आएंगे दिल को छू लेने वाली बातें, शानदार नगमे। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं इशरत।

और अब इस कार्यक्रम में हम बातें करने जा रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस महान गायिका को कि जिनकी आवाज में मिठास साधना भी और आध्यात्मिकता भी थी। जी हाँ, बातें हो रही हैं बेगम परवीन सुल्ताना की। कहते हैं जब सुर दिल से निकलते हैं तो सीधे दिल तक पहुंचते हैं, और बेगम परवीन सुल्ताना की गायकी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। असम की धरती पर जन्मी बेगम परवीन सुल्ताना ने बचपन से ही संगीत की शिक्षा शुरू कर दी थी। आगे चलकर उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और रियाज से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक ऐसा मुकाम बनाया जहां पहुंचना हर कलाकार का सपना होता है। उनकी गायकी में ख्याल, ठुमरी, टप्पा, भजन और गजल हर शैली की अलग ही मिठास सुनाई देती है। उनकी आवाज की ऊंचाई, सुरों की शुद्धता और तानों की गति श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। दोस्तों, अब समय है उस मधुर गीत का जिसमें बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज ने फिल्मी संगीत को भी नई ऊंचाई दी। लीजिए सुनिए ये गीत।

बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था मजरूह ने और तर्स बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

और अब दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस गीतकार को जिनके शब्दों में सादगी भी थी, मोहब्बत भी और दिल को छू लेने वाली मिठास भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीतकार असद भोपाली की। दोस्तों, असद भोपाली का असल नाम असदुल्लाह खां था। उनका जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल में हुआ था। उन्होंने हिंदी जिनमें प्यार भी था, अपनापन भी, दर्द भी और उम्मीद भी। उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी ये थी सरल भाषा में गहरी बात कहना। फिल्मी दुनिया में उन्होंने कई यादगार गीत लिखे जो आज

आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर हैं। उनके लिखे गीतों में भावनाओं की सादगी और शब्दों की मिठास साफ दिखाई देती है। उनकी लेखनी में कभी मोहब्बत की नरमी दिखाई देती है तो कभी जिंदगी के संघर्ष का एहसास। यही कला उन्हें अपने दौर के खास गीतकारों में शामिल करती है। तो चलिए अब आइए सुनते हैं उनका एक यादगार गीत।

दोस्तों, गीत लिखना केवल शब्दों को जोड़ना नहीं होता, बल्कि भावनाओं को सुरों में ढालना होता है। असद भोपाली इस कला के उस्ताद थे। उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो समय के साथ और भी खूबसूरत लगने लगे। आज जब हम पुराने फिल्मी गीत सुनते हैं तो उनमें असद भोपाली जैसे गीतकारों की मेहनत और संवेदनशीलता साफ महसूस होती है। उनके शब्द हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शायरी कभी पुरानी नहीं होती।

नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में हम आपसे करते हैं ढेर सारी बातें। अब हम आपको सेहत से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। साइलेंट किलर बनता हाइपरटेंशन, समय रहते सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जी हाँ, ये सही बात है। बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव और खानपान के कारण हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, ये हम आप सभी जानते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में लोगों को लंबे समय तक ये पता ही नहीं चलता कि वे इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हाइपरटेंशन होता क्या है? जब हृदय शरीर में रक्त का संचार करता है तो धमनियों पर एक दबाव पड़ता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यदि यह दबाव लगातार सामान्य स्तर से ऊपर बना रहता है तो उसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शुरुआती चरण में इसके कोई अस्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। लगभग 50% मरीजों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। कई मामलों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी संबंधी समस्या के बाद जांच में ये बीमारी सामने आती है। इसी वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आधुनिक जीवन शैली इसका सबसे बड़ा कारण है। फास्ट फूड का बढ़ता चलन, शारीरिक गतिविधियों में कमी, तनाव, मोटापा, नींद की कमी और प्रदूषण जैसी समस्याएं हाई ब्लड प्रेशर के मामलों को तेजी से बढ़ा रही हैं। लोगों को इसमें क्या क्या चीजें कम करनी चाहिए या खाने में क्या क्या परहेज करना चाहिए? नमक का सेवन कम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और तनाव से हमेशा अपने आप को दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच बेहद जरूरी है। सही समय पर सावधानी बरतकर इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है।

और अब चलते चलते मौसम का हाल आपको बताते चलें। आज का अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और मुख्य रूप से बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। और अब लीजिए सुनिए मौसम से जुड़ा ये गीत।

0: ओहो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ परदेसी हूँ।
1: देश परदेश, प्यार में कैसा देश परदेश।

वाकई मौसम तो बड़ा सुहाना है। शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे अंदर बाहर फिल्म का ये गीत। और इस गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से अपने रेडियो सखी इशरत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: Food.
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके

0: 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 12:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम शीर्षक गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे गीत से हम करने जा रहे हैं जो बादलों की ठंडक और दिल की तड़प दोनों को बड़ी खूबसूरती से महसूस कराता है। जब आसमान में काले बादल उमड़ते हैं तो सिर्फ धरती ही नहीं दिल भी भीगने लगता है। ऐसे ही एहसासों को शब्दों और सुरों में पिरोया गया है गीत मेघारे मेघारे में। ये गीत बारिश की फुहारों के साथ प्रेम, इंतजार और यादों की भीनी भीनी खुशबू लेकर आता है। तो आइए मौसम के इस सुहाने अंदाज का आनंद लेते हैं और सुनते हैं दिल को छू लेने वाला ये खूबसूरत नगमा।

मित्रों, कभी कभी हवा सिर्फ बहती नहीं बल्कि दिल की अनकही बातों को भी अपने साथ ले जाती है, और जब यही एहसास शुरू में ढलता है तो जन्म होता है एक ऐसे नगमे का जो बरसों बाद भी

दिल को छू लेते हैं। लता मंगेशकर की मधुर आवाज़, आरडी बर्मन का मनमोहक संगीत और आनंद बख्शी के भावपूर्ण बोलों से सजा फिल्म बेमिसाल का ये गीत ऐरी पवन मानो प्रकृति और मन के बीच एक खूबसूरत संवाद है। तो आइए हवाओं के साथ यादों की इस सुरीली उड़ान पर चलते हैं और सुनते हैं फिल्म बेमिसाल का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। हवा का हर झोंका अपने साथ कोई ना कोई एहसास लेकर आता है। कभी ठंडी पुरवैया मन को सुकून देती है, तो कभी वही पवन पुराने दिनों के मीठी यादों को ताजा कर जाती है। ऐसे ही एहसासों से सजा है अगला खूबसूरत नगमा। तो आइए कुछ पल रुकते हैं, मन की खिड़कियां खोलते हैं और महसूस करते हैं पुरवैया की वही मीठी छुअन। पेश है दिल को सुकून देने वाला ये सदाबहार गीत।

हवा की अपनी कोई मंजिल नहीं होती, लेकिन उसकी हर सरगोशी किसी न किसी दिल तक ज़रूर पहुंचती है। कभी वो यादों की खुशबू लेकर आती है, तो कभी किसी अपने की आहट का एहसास करा जाती है। और जब गीत के बोल हो, मेरे पी को पवन कहाँ ले चली, तो लगता है जैसे इंतज़ार और प्रेम की सारी भावनाएं इस हवा के साथ बह निकली हों। आइए इस मधुर एहसास को अपने दिल में बसाइए और सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब चलते चलते हम उन फिल्मों के नाम आपको बताते चलें जिनका गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यासा सावन, बेमिसाल, अनुराग और गुलामी। और इसी के साथ शीर्षक गीत का ये सुरीला सफर अब ख़त्म हुआ।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं राग पूर्वी में विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन।

राग पूर्वी में भी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेक इन क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5-स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायो माइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक मेडिकल रूम का उद्घाटन किया। आपात स्थिति के लिए एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर से लैस जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी तैनाती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिसंबर तक टर्मिनल के चेक इन क्षेत्र का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा।
1: ये मस्ट है, किसी भी यात्री को कहीं हेल्थ इश्यू आता है तो उसको तुरंत ही हम रिलीफ दें। मणिपाल उसके 49 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश भर के। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो रांची एयरपोर्ट है बहुत सुविधाओं से युक्त हो रहा है।
0: रांची के इटकी टीबी सेनेटोरियम परिसर की 50 एकड़ भूमि पर एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और योग केंद्र विकसित होंगे। आयुष मंत्रालय की टीम ने भूमि का निरीक्षण कर लिया है और जल्द ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार के दिल्ली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स को दिखावा करार दिया है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में राज्य में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाकर पीठ थपथपाने से झारखंड में कोई वास्तविक निवेश नहीं आने वाला है।
2: इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें महारत हासिल है झारखंड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता से कई सारे उद्योग लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन पिछले 7 वर्ष की सरकार में एक भी बड़ा उद्योग जो है पूरे प्रदेश में लगाने में वो विफल रहे।
0: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की झारखंड स्थित पकरी बरवाडीह कोयला खदान को देश में पहला स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला नियंत्रक कार्यालय ने पकरी बरवाडीह ओडिशा की दुलंगा और छत्तीसगढ़ की तलाईपल्ली खदानों को 5-स्टार रेटिंग दी है। कंपनी ने इसे सुरक्षित खनन और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। धनबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिन्हित 3000 बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सिविल सर्जन के निर्देश पर आज और 13 जुलाई को जिले के सभी प्रखंडों में प्रथम चरण का उपचार किया जा रहा है। गंभीर बीमारी वाले बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस आज आर्यभट्ट सभागार में शुरू हुआ। 3 दिवसीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर झारखंड स्टेट एजुकेशन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नरेंद्र भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुलपति ने बताया कि कल सोहराय कला पर विमर्श और पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। समापन वाले दिन पौधारोपण और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
1: कल विद्यार्थी जो शिक्षा के नीति के अनुरूप उनका कला और संस्कृति दीर्घा और फाइन आर्ट्स का प्रदर्शन होगा और परसों जो हमारा अंतिम दिन होगा जो कि वास्तव में 12 तारीख स्थापना दिवस है उस दिन हम विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे।
0: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग छापेमारी में 75 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की। SDPO डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि पुलिस इस बड़े सिंडिकेट की जांच कर रही है।
2: पुलिस के पूछताछ के क्रम में ये पाया गया है कि ये सभी लोग एक ड्रग पेडलिंग सिंडिकेट का हिस्सा, बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आते थे चक्रधरपुर में, छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करते थे। तो एक बड़े नेटवर्क को इसी तरह 2 बैक-टू-बैक छापामारी करते हुए ध्वस्त किया गया। इसमें और भी हमारे पास इनपुट्स हैं और लीड्स हैं जिस पर अभी अनुसंधान जारी है।
0: सरायकेला खरसावां में आगामी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने नगर क्षेत्र का पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान रथ यात्रा समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.9% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 666 अंक चढ़कर 77,407 पर और निफ्टी 198 अंक बढ़कर 24,161 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में सक्रिय मॉनसून के बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। 12 और 13 जुलाई को रांची, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में गोड्डा में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बोकारो में 18 से 27 अगस्त तक NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी संघ के जिला अध्यक्ष लंबोदर महतो ने बताया कि इसमें देश के बेहतरीन तीरंदाज, ओलंपियन और राष्ट्रीय कोच शिरकत करेंगे।
3: निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

0: स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे और सभी ग्रुप का मिलाकर लगभग 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झीरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5-स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: कार्यक्रम के आरंभ से पहले आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपके रेडियो से केशरत कबूल कीजिए हमारा आदाब नमस्कार।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में भी आप सुन रहे थे अनजान फिल्म का, माफ कीजिएगा, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत। अनजान के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: ब्रेक खत्म हुआ और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फिल्म एक दूजे के लिए का ये नगमा भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ें थीं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: पता है शेखर,

0: समीर का लिखा ये गीत भी आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था, संगीत जतिन ललित का था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का

0: पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है।
1: ब्रेक खत्म हुआ और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का

फिल्म हीरो का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: Details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के

0: स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के

0: 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट

अंग्रेजी और हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

अग्निपथ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और संगीत अजय अतुल का था।

रश्मि विराग का लिखा ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। तर्ज बनाई थी जीत गांगुली ने और फिल्म का नाम था सिटी लाइट। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ों में भी आपने सुना तमाशा फिल्म का ये गीत, और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही फॉर्म भर सकते हैं, गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने टीजीटी नियुक्ति परीक्षा 2016 में विलंब से नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने समान वरिष्ठता, अपग्रेड वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने अजय कुमार सहित 8 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे बदलावों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। डॉ. अंसारी ने विशेष रूप से रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रिम्स 2 के शुरू होने से झारखंड के मरीजों को राज्य में ही आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। डीजीपी ने नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान तेज करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम लोगों में सुरक्षा के प्रति विश्वास मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। नई लिफ्टें सेल्फ रेस्क्यू प्रणाली सहित अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिससे बिजली बाधित होने की स्थिति में भी यात्रियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होगी। सिमडेगा जिले में ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार रथ यात्रा शुरू होने के बाद 9 दिनों तक विभिन्न बस्तियों के लोग बारी बारी से भगवान को महाप्रसाद का भोग अर्पित करते हैं।
1: खास बात है कि 9 दिनों तक लगातार रथ यात्रा के बाद महाप्रसाद भोग लगाया जाता है और वितरण कराया जाता है, जिसमें 100 से 150 केजी भोग लगाया जाता है। और यह व्यवस्था गांव के लोग करते हैं, सबका बस्ती बांटा हुआ है, किस दिन किस बस्ती को करना है। किसी दिन ब्राह्मण बस्ती को है, तो राउत बस्ती को है, तो नीचे बस्ती को है।
0: दुमका जिले में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ने 190 चिन्हित गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 133 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है। अब तक 1025 घरों में मीटर लगाकर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन

0: समिति के अनुसार खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण के लिए किया जाएगा।
1: सीआईएससी सिस्टम में है और दिल्ली का जो सीआईएससी दो साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है खेल में। खेलो इंडिया एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसी हिसाब से इस साल हर एक बच्चे से 100 रुपया करके लोग कलेक्ट किए हैं।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं।
2: जी।
3: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्प उत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
3: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं, शोर

0: धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत,

कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए, वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई।
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की,

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो।
2: सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
4: ऐसा ही होगा।
3: ऐसा ही होगा।
1: क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही हम वापस लौटना चाहते हैं। सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
5: हमें कुछ नहीं चाहिए।
6: मैसिडोनिया चलो,
7: वापस चलो
6: सम्राट।
0: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
8: चलो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं कह सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो,
4: धन्य हो,
5: धन्य हो,
4: धन्य हो।
0: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।

बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं विदुषी गिरिजा देवी का ठुमरी।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी से ठुमरी। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं सोमराय तिर्की और

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आज के कलाकार हैं सोम राय तिर्की और साथी। आइए सुनते हैं उरांव में ये अगली प्रस्तुति।

0: और साथियों के स्वर में गाए उराव लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष

0: शिविर लगाने को कहा। 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। बैठक में एएसडीडी सूची का सार्वजनिक वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर एआई वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता लेने की भी अपील की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायोमाइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रांची समाहरणालय में आम नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 नई आधुनिक लिफ्टों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में संचालित लिफ्टों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गुरतुर गांव में ओझागुड़ी के शक में 65 वर्षीय केशव राम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के बाद मौके से आरोपी महिला सुनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में सीआईएससीई जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम बज़्म क़व्वाली। कार्यक्रम के आगाज़ में आइए सुनते हैं इकबाल और अफजल साबरी खां की आवाज़ में ये क़व्वाली।

0: बज़्म कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। फनकार थे इकबाल और अफजल सावरी खान। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 4:30 हुए हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 MHz पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों।

0: 0657296044 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657296044 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
1: प्रस्तुत है फिल्म संगीत सलामे इश्क। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, साधना सरगम और शंकर महादेवन।

दीवाने इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, बोल थे समीर के, धुन बनाई थी दर्शन राठौड़ और संजीव राठौड़ ने। इस गीत के लिए आवाज़ें दी थी अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह ने। इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार मुख्यांश का प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन औद्योगिक संवर्धन और निवेश पर उच्च स्तरीय मंथन हुआ, जिसमें झारखंड को देश के अग्रणी औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सली विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ

0: झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में आज भीखी तालाब में डूबने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि तालाब में डूब रही एक युवती को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त है कुछ जानने का, समझने का और जागरूक होने का। मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति।
1: और मैं हूँ साहिल।
0: आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। साहिल, आज का कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है।
1: अच्छा ज्योति, ऐसा क्यों?
0: क्योंकि आज बातें होंगी आधुनिक कानून से लेकर साहित्य तक की। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेहद खास है आज का कार्यक्रम, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक।
1: आज जब सुबह सुबह फोन खोला तो पहली खबरों में यही देखने को मिला कि किसी का सोशल मीडिया हैक हो गया, तो किसी के साथ डीप फेक स्कैम हो गया। डिजिटल दुनिया जितनी जादुई है उतनी डरावनी भी।
0: बिल्कुल सही साहिल, तकनीक जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से नए जमाने में क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन साहिल, क्या आपको पता है कि इन नए जमाने के चोरों और स्कैमर्स से निपटने के लिए हमारा कानून भी अपग्रेड हो चुका है।
1: अपग्रेड? वाह, जैसे हमारे डिवाइसेस होते हैं वैसे ही।
0: जी बिल्कुल साहिल, 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है बीएनएस ने, यानी कि भारतीय न्याय संहिता।

0: भारतीय न्याय संहिता और आज हम जानेंगे कि यह डिजिटल युग में कितना प्रासंगिक है।
1: ये तो वाकई बहुत जरूरी टॉपिक है, लेकिन पुराना कानून भी तो काम कर ही रहा था। इस नए बीएनएस में डिजिटल क्राइम्स को लेकर क्या खास है?
0: सुनिए साहिल, 1860 की भारतीय दंड संहिता आईपीसी के जमाने में ना तो इंटरनेट था और न ही स्मार्टफोन्स और एआई। पुराने कानून में दस्तावेज या सबूत का मतलब सिर्फ कागज होता था, लेकिन बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 8 में अब दस्तावेज की परिभाषा को बदल दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी पूरी तरह शामिल कर लिया गया है।

अच्छा, इसका मतलब अब हमारे चैट्स, ईमेल्स, यहाँ तक कि वॉइस मैसेज भी अदालत में पक्के सबूत माने जाएंगे।

0: इसके अलावा डिजिटल मीडियम से किसी महिला को स्टॉक करना या परेशान करना भी काफी भारी पड़ सकता है।
1: साथ ही धारा 111 के तहत संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसमें पहली बार साइबर क्राइम्स को भी शामिल किया गया है, जो गिरोह बड़े पैमाने पर फिशिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन सट्टेबाजी या अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी चलाते हैं, उनके खिलाफ भी इस धारा में कड़ी सजा का प्रावधान है। साहिल, आजकल एक घटना बहुत देखी जा रही है, वो है फर्जी अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करना, उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है?
0: जी हाँ ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी होने का दावा करता है और झूठी पहचान बनाता है, लोगों के साथ ठगी करता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही धारा 308 के तहत डिजिटल माध्यम से डरा धमकाकर पैसे वसूलने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
1: चलो, कम से कम इंटरनेट की गलियों में घूमने वाले इन अपराधियों को समझ आएगा कि कानून के हाथ डिजिटल दुनिया में भी लंबे हैं। पर साहिल, एक और बात, आजकल हम सुनते हैं वेबसाइट हैक हो गई, रैंसमवेयर अटैक हो गया, देश के डेटा पर हमला हो गया। क्या BNS देश की सुरक्षा और साइबर टेररिज्म पर भी बात करता है?
0: ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। BNS में पहली बार आतंकवादी कृत्य को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। धारा 113 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके देश की आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता या सरकारी डेटाबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। यानी साइबर आतंकवाद से लड़ने के लिए अब देश के पास मजबूत ढाल है।

0: पर एक सवाल ये भी है, आम जनता के लिए डिजिटल कानून का क्या फायदा है? अगर मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो क्या अब भी मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने होंगे?
1: यही तो सबसे बड़ा डिजिटल रिफॉर्म है साहिल। बीएनएस के साथ जो हमारी न्याय प्रक्रिया बदली है, अब आप EFIR दर्ज करा सकते हैं। आपको तुरंत थाने भागने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पुलिस के लिए भी तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और सबूत डिजिटल रूप से सुरक्षित रहे।
0: वाह, यानी कानून सिर्फ डिजिटल अपराधों को रोक नहीं रहा, बल्कि खुद भी डिजिटल हो गया है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का ये परफेक्ट एग्जांपल है।
1: बिल्कुल, संक्षेप में कहें तो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने हमारे देश के कानूनी सिस्टम को 19वीं सदी से निकाल कर सीधे 21वीं सदी के डिजिटल युग में लाकर खड़ा कर दिया है। यह अपराधियों के लिए चेतावनी है और आम नागरिकों के लिए सुरक्षा का भरोसा।
0: क्या बात है ज्योति, आपने इतनी जटिल बात को इतने आसान शब्दों में समझा दिया। तो दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए, डिजिटल दुनिया में आपकी सुरक्षा के लिए भारतीय न्याय संहिता मुस्तैद है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी परिचर्चा की ओर। आज अचानक वो दिन याद आ गया जब 10वीं का रिजल्ट आया था और असमंजस में मन था कि आगे क्या करना है।
1: बिल्कुल साहिल, आज भी जब करियर की बात आती है तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा मिथ रहा है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो साइंस ले लो, और सिर्फ पास होना है तो आर्ट्स। लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम उस संकाय के नाम है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की।
0: आज के युवाओं के लिए कॉमर्स सिर्फ अकाउंटिंग और बही खाता तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा समंदर है जहाँ करियर के कई शानदार विकल्प हैं। सबसे पहले तो वो करियर जिसे कॉमर्स का किंग माना जाता है, हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। दोस्तों, अगर आपको नंबर्स से प्यार है और आपकी एनालिटिकल स्किल्स मजबूत है तो CA आपके लिए बेस्ट है। देश की बड़ी कंपनियों से लेकर सरकार तक को CA की ज़रूरत होती है। टैक्स प्लानिंग हो, ऑडिटिंग हो या फाइनेंशियल एडवाइस हो, CA के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।

0: इसमें एक और बात जोड़ दूं तो अगर आप ग्लोबल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी कर सकते हैं। आजकल CS यानी कंपनी सेक्रेटरी भी बहुत प्रचलन में है। बहुत लोग समझते हैं कि सेक्रेटरी का काम क्या ही होता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CS किसी भी कंपनी का लीगल एक्सपर्ट होता है, कंपनी कानून के मुताबिक काम कर रही है या नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कानूनी सलाह देनी है, यह सब CS तय करता है। यह बेहद जिम्मेदारी और सम्मान वाला पद है।
1: ये तो हो गए ट्रेडिशनल और एवरग्रीन ऑप्शंस, लेकिन आज के युवा कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। दोस्तों, अगर आपकी शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है इसमें दिलचस्पी है, तो आप CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का कोर्स भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की सैलरी भी काफी अच्छी होती है। आइए जानते हैं युवाओं की इस पर क्या राय है।

0: नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह है। अक्सर जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले सीए या अकाउंटेंट बनने का ख्याल आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में कॉमर्स का क्षेत्र इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। इसमें बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस और सरकारी नौकरियों जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। आज डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बिजनेस और नई टेक्नोलॉजी के कारण कॉमर्स के छात्रों के लिए नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी छात्र की रुचि पैसे के प्रबंधन, बिजनेस या अर्थव्यवस्था को समझने में है तो कॉमर्स उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे अनुसार किसी भी विषय में अच्छा भविष्य के लिए विषय चुनने से नहीं बनता, बल्कि उस विषय को सही तरीके से समझने, अपनी रुचि पहचानने और लगातार सीखने रहने से बनता है। मैं रेडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कॉमर्स में भविष्य की काफी संभावना है, लेकिन हमें अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही दिशा चुननी चाहिए। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मेरा नाम विनोद रविदास है, मैं संकोसाई में रहता हूँ। मैंने कॉमर्स लेकर के पढ़ाई की और अभी फिलहाल मैं जमशेदपुर के एक अच्छे होटल में मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। कॉमर्स जो है ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, जो भी छात्र चाहते हैं कि इसमें पढ़ाई करें, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कॉमर्स लेकर के पढ़ सकते हैं। इसमें कई सारे स्कोप हैं जिससे उन्हें आगे चल करके उनके जीवन में कई सारे रास्ते खुलेंगे।
2: नमस्कार, मैं अश्विनी, जमशेदपुर का रहने वाला हूँ।
3: आज कॉमर्स के फ्यूचर स्कोप के बारे में बताना चाहता हूँ। कॉमर्स का भविष्य तेजी से बदलता स्वरूप, पहले कॉमर्स का मतलब केवल हिसाब किताब या व्यापार तक सीमित था, लेकिन अब यह विषय पूरी तरह से बदल गया है। भविष्य में कॉमर्स का क्षेत्र तकनीक के साथ मिलकर काम करेगा। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए हम इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा, आजकल कंप्यूटर और AI व्यापार के आंकड़े समझते हैं। कॉमर्स के छात्र जब डेटा विश्लेषण सीखते हैं तो वे कंपनियों को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत बढ़ गया है। इससे ई कॉमर्स मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में नौकरियों में के नए द्वार खुले हैं। ग्लोबल बिजनेस, दुनिया भर की कंपनियां अब एक दूसरे से जुड़ रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी कानूनों ज्ञान रखने वाले लोगों की बहुत मांग है। प्रमुख करियर विकल्प कॉमर्स के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए कई बेहतरीन रास्ते मौजूद हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर BBA भी कर सकते हैं। इस कॉमर्स के जरिए छात्र बिजनेस मैनेजमेंट सीखते हैं और खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।
4: जो लोग मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रास्ते हमेशा खुले हैं। चाहे मार्केटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स हो या इंटरनेशनल बिजनेस, कॉमर्स वाले छात्र सब में कमाल कर रहे हैं।
5: बिल्कुल सही ज्योति, आज के समय में डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स कॉमर्स छात्रों का पसंदीदा है। अगर आप कॉमर्स के साथ कोडिंग या स्टैटिस्टिक्स सीख रहते हैं तो आप कंपनियों का बिजनेस डेटा एनालाइज कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की रणनीति दे सकते हैं। ये तो सारी हो गई प्राइवेट सेक्टर की बातें।
4: बात करें सरकारी क्षेत्र की तो इसमें भी शानदार मौके हैं। बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। IBPS या SBI के जरिए

0: क्लर्क या प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट तो हर कॉमर्स स्टूडेंट्स का सपना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एसएससी सीजीएल के जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इन नौकरियों में कॉमर्स बैकग्राउंड होने से काफी फायदा मिलता है।
1: अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो बीकॉम और एमकॉम के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं या स्कूल में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के टीचर भी बन सकते हैं।
0: कॉमर्स आज के दौर में एक डायनेमिक और हाई पेइंग करियर विकल्प देने वाला संकाय है। दोस्तों, आप अपनी रुचि को पहचानिए। सीए हो, स्टार्टअप्स हो या सरकारी नौकरी, अगर आपके पास स्किल है और जज्बा है तो आप क्या नहीं कर सकते।
1: इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी इस खूबसूरत शाम की आखिरी परिचर्चा की ओर, जो है हमारे साहित्य प्रेमी मित्रों के लिए। आज हम जिस उपन्यास की बात करेंगे उसका नाम लेते ही एक अजीब सी टीस और समाज का कड़वा सच सामने आ जाता है।
0: बिल्कुल सही, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की उस महान कृति की, जिसने आज से लगभग एक सदी पहले समाज के खोखलेपन को उजागर किया था। हम बात कर रहे हैं उपन्यास निर्मला की।
1: निर्मला सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज में फैली दो कुरीतियों का जीवंत उदाहरण है, जिसने ना जाने कितनी ही निर्मलाओं की जिंदगी को जीते जी नरक बना दिया। पहला दहेज प्रथा और दूसरा अनमेल विवाह।
0: कहानी की मुख्य किरदार है निर्मला, एक 15 वर्ष की सुंदर, सुशील और सपनों से भरी लड़की। उसकी शादी एक बड़े घर में तय होती है, लेकिन उसके पिता की मृत्यु और दहेज न दे पाने के कारण वो शादी टूट जाती है। और यहीं से शुरू होता है निर्मला के दुखों का पहाड़। समाज के दबावों में आकर निर्मला की शादी उससे दोगुने बड़े एक अधेड़ उम्र के विधुर तोताराम से कर दी जाती है, जिनके पहले ही 3 बेटे हैं। तोताराम उम्र में निर्मला के पिता जितना है। सोचिए दोस्तों, 15-16 वर्ष की बच्ची जिसे अभी दुनियादारी की ठीक समझ भी नहीं थी, उसे अचानक पत्नी और 3 बड़े बच्चों की माँ की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। प्रेमचंद जी ने निर्मला के मानसिक द्वंद्व और उसकी घुटन को जिस तरह शब्दों में पिरोया है, उसे पढ़ते हुए आंखें नम हो जाती है।
1: कहानी में मोड़ तब आता है जब तोताराम का बड़ा बेटा मनसाराम, जो कि लगभग निर्मला की उम्र का है, उसके प्रति तोताराम के मन में शक पैदा हो जाता है। समाज की संकीर्ण सोच और एक बूढ़े पति का आत्मघाती शक पूरा परिवार तबाह कर देता है। वह शक मनसाराम की जान ले लेता है। एक एक कर तोताराम के बाकी बेटे भी बिखर जाते हैं। तोताराम घर छोड़कर चले जाते हैं और अंत में बचती है सिर्फ निर्मला। अपनी एक छोटी बच्ची के साथ समाज के तानों और गरीबी से लड़ती हुई आखिरकार वो भी असमय ही मौत के मुंह में समा जाती है।
0: दोस्तों, इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1925 से 26 में लिखा जाने के बावजूद आज 2026 में भी यह प्रासंगिक लगता है। प्रेमचंद जी ने निर्मला के माध्यम से समाज को आईना दिखाया था। उन्होंने यह दिखाया कि जब हम किसी महिला के आत्मसम्मान और अधिकारों को कुचलते हैं, तो सिर्फ वह महिला खत्म नहीं होती, नष्ट होता है पूरा परिवार। निर्मला की भाषा इतनी सरल है कि पाठक कहानी के साथ बहता चला जाता है। प्रेमचंद जी का हर संवाद सीधे दिल पर चोट करता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए सुनते हैं एक गीत।

0: आपने अभी सुना फिल्म रॉकस्टार का गीत, जिसके बोल थे कुम फाया कुम। गीतकार थे अरशाद कामिल, संगीतकार एआर रहमान और आवाज थी एआर रहमान, मोहित चौहान और जावेद अली की। इसलिए दोस्तों, अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो हमारी ओर से एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। आज भी आसपास न जाने कितनी निर्मला सिसक रही हैं, उन्हें भी खुशहाल जीवन जीने का हक है और ये हक शायद एक बेहतर समाज ही दे सकता है। सोच बदलिए, समाज बदलेगा। फिर मिलेंगे नई किताब और नए पन्नों के साथ।
1: विदा लेने से पहले चलिए जानते हैं कुछ समसामयिक खबरें। क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इसी के साथ कार्यक्रम युवावाणी से अपनी दोस्त ज्योति
0: और साहिल को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही शाम में। तब तक के लिए जागरूक रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ आगे के कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने थोड़ी ही देर में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से लीजिए सुनिए श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

कार्यक्रम कल कारखाने सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाइयों को मालती का नमस्कार। श्रमिक श्रोताओं, हम आपको बताएं कि आज अपने कार्यक्रम में हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा कैंसर के उपचार में दर्द निवारण और पैलिएटिव केयर की भूमिका। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपनी चर्चा से। श्रोताओं, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम सब एक मशीन बनकर रह गए हैं। लगातार काम करते करते हम कभी कभी थका हुआ सा महसूस करते हैं। इसी समय में हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। सही में जिस तरह भोजन और वस्त्र हमारे जीवन की आवश्यकता है, उसी तरह मनोरंजन हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मनोरंजन के अभाव में जीवन शुष्क और नीरस बन जाता है। एक जैसा जीवन जीते जीते हम उदासीन हो जाते हैं। नई स्फूर्ति, नया उत्साह और नई शक्ति के लिए कुछ न कुछ मनोरंजन के साधन की आवश्यकता पड़ती ही है। मनोरंजन के जरिए हमारा मानसिक तनाव दूर होता है और थोड़ी देर के लिए हम अपने दैनिक काम से हटकर समय बिताते हैं, जिससे तनावपूर्ण मन को आराम मिलता है और फिर एक नई ताजगी आती है। श्रोताओं, जब आप लंबे समय तक काम में व्यस्त रहते हैं और रोज एक जैसा ही कार्य करते हैं, तो मन में एक शिथिलता आ जाती है। अतः आप अपने दैनिक जीवन में मनोरंजन को भी स्थान दें। इसलिए तो सप्ताह में एक दिन अवकाश के नियम बनाए गए। मनोरंजन से ही जीवन में ताजगी, रुचि और प्रखरता बनी रहती है। मन को प्रसन्नता देने के कई माध्यम हैं। कुछ लोग तो संगीत सुनकर, टीवी देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार थोड़ी देर जरूर मनोरंजन में समय दें। परिवार में बैठकर एक दूसरे से विनोदपूर्ण बातें करना, कुछ इंडोर गेम्स खेलना भी आपको तरोताजा करता है। समय निकालकर बीच बीच में कोई प्राकृतिक स्थानों में घूमने जाएं, जिससे भी मानसिक तनाव दूर होता है। अपनी जीवन शैली में सहजता रखें, जीवन के हर पल को प्रसन्नता पूर्वक बिताएं, इससे आप मानसिक तनाव से बच सकेंगे। हास्यपूर्ण कविता या लेखनी पढ़ना भी मनोरंजन का ही हिस्सा है। कुछ लोग नृत्य करके भी अपना तनाव दूर करते हैं। अतः आप भी अपनी जीवन शैली में इन सब को अपना कर खुश रह सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

बताएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना को

0: फिल्म हकीकत का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, शब्द रचना कैफी आज़मी की थी और संगीत था मदन मोहन का। और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अशोक जादौन की ये भेंट वार्ता। विषय है कैंसर के उपचार में दर्द निवारण और पैलिएटिव केयर की भूमिका। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक जादौन और बातचीत कर रही हैं स्नेहलता।
1: श्रोता साथी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर फैल भी सकता है। शुरुआती पहचान से इलाज की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। सकारात्मक सोच, परिवार का सहयोग और सही चिकित्सा देखभाल, ये सब मिलकर लड़ाई को मजबूत बनाते हैं। आधुनिक चिकित्सा में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और टारगेटेड थेरेपी जैसे प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। दर्द निवारण और पैलिएटिव केयर मरीज की जीवन गुणवत्ता बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, इसी संदर्भ में विशेष और अधिक जानकारियों के संग्रहण के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक जादौन को, जो मेहर भाई टाटा कैंसर हॉस्पिटल जमशेदपुर में पेन एंड पैलिएटिव केयर के कंसल्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कैंसर क्यूरेबल है आज के समय में? कभी कभी ये सुनने में आता है कि ये क्यूरेबल है। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, कैंसर पेन एक जागृत समस्या है, इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कितना गंभीर है, हमें इसकी भी जानकारी दीजिए।
2: जैसा आपने पूछा पहला प्रश्न कि कैंसर आज के समय में क्यूरेबल है कि नहीं,
1: जी,
2: तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैंसर आज के समय में क्यूरेबल है। उसके लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और दूसरे एडवांस टेक्निक आजकल अवेलेबल हैं।
1: जी।
2: लेकिन साथ में मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ श्रोताओं को कि कैंसर के बारे में जागृति बहुत जरूरी है, जो अभी भी हमारे समाज में नहीं है। अगर कैंसर बीमारी के अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो क्यूरेबल है, बट दुर्भाग्य यह है कि लोगों को जानकारी न होने से यह अक्सर लेट अवस्था में पकड़ाता है और फिर इसको इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आपका दूसरा प्रश्न, तो कैंसर का दर्द एक गंभीर वैश्विक समस्या बनी हुई है। कैंसर से पीड़ित अधिकांश लोग अपनी बीमारी या उपचार के दौरान किसी न किसी प्रकार के दर्द का अनुभव करते हैं। कैंसर का दर्द लगभग 70-80% लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि वैज्ञानिक प्रगति ने उपचार में सुधार किया है, फिर भी विकसित देशों में लगभग 50% और विश्व स्तर पर लगभग 80% रोगियों को अपर्याप्त दर्द निवारण मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम कैंसर के पेन की बात कर रहे हैं, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर के दर्द का क्या कारण होता है?
2: ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। कैंसर का दर्द आमतौर पर 3 मुख्य स्रोतों से उत्पन्न होता है।
1: जी।
2: पहला, ट्यूमर स्वयं, जिसे हम लोग कैंसर की गठान भी बोलते हैं। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है वो आसपास के ऊतकों को, हड्डियों को और अंगों को दबाता है
1: जी।
2: या नष्ट करता है। और हड्डी में ट्यूमर का फैलना कैंसर से संबंधित दर्द का सबसे आम कारण है। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण उपचार के दुष्प्रभाव, जो भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो पेशेंट्स को मिलता है
1: जी।
2: वैसे तो वो वास्तव में उपचार के लिए दी जा रही हैं, जिससे कि कैंसर का निदान हो, बट दुर्भाग्य है कि जैसे आम दवाई भी अपना साइड इफेक्ट करती हैं, कैंसर की दवाइयां भी बहुत सारे दुष्प्रभाव रखती हैं। जैसे कैंसर के इलाज से होने वाले दुष्प्रभाव में सर्जरी भी एक सहयोगी है।
1: जी बिल्कुल।
2: सर्जरी के दौरान और उसके बाद में भी पेशेंट को और मरीज को दर्द हो सकता है। सर्जरी के दौरान कभी कभी कोई नर्व एंट्रैपमेंट हो जाता है, उसके कारण भी दर्द होता है
1: जी।
2: दूसरा, कीमोथेरेपी, जो एक कैंसर की बीमारी को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाई है
1: जी।
2: उससे जो सेल्स है या टिश्यू है उसको भी डैमेज होता है, और वो बल्कि बहुत ही घातक न्यूरल डैमेज करती हैं, जिसको कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूराइटिस भी बोलते हैं। तीसरा आपका रेडिएशन, इससे भी कभी कभी त्वचा में जलन, झिल्लियों जाने म्यूकोसा में सूजन, जिसको हम लोग म्यूकोसाइटिस बोलते हैं, या कभी कभी लॉन्ग टर्म नर्व डैमेज भी होता है
1: जी।
2: इसके अलावा ये मरीज अक्सर बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी है
1: जी,
2: या कहीं कहीं स्पाइनल कॉर्ड में से फ्लूड निकाल के जांच के लिए दिया जाता है
1: जी,
2: ये दोनों प्रोसीजर्स भी दर्द का कारण बनते हैं
1: जी। मतलब जो उपचार किया जा रहा है वो भी कारण हो सकता है दर्द होने के।
2: बिल्कुल सही।
1: तो आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब और आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर का जो ये दर्द होता है कितने प्रकार का होता है और क्यों जरूरी है इसको जानना कि ये कौन से प्रकार का है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर का दर्द वैसे तो अनेक प्रकार का होता है
1: जी,
2: और इसको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप किसी खास दर्द के लिए खास व्यवस्था कर सकें, खास मेडिसिन यूज कर सकें, खास ट्रीटमेंट यूज कर सकें, इसलिए इसका समझना जरूरी है। तो कैंसर के दर्द के अनेक प्रकार हैं, जैसे नॉसिसेप्टिव पेन, ये होता है जब टिश्यू डैमेज के कारण होता है
1: जी,
2: और इसमें हड्डियां या मांसपेशियों में अकड़न होती है, और कभी विसरल पेन होता है जिसमें अंदरूनी अंगों में ऐंठन वाला दर्द शामिल है
1: जी।
2: एक होता है न्यूरोपैथिक पेन, ये नसों पर डैमेज या दबाव के कारण होने वाली तेज जलन या झुनझुनी या सनसनी जैसा दर्द होता है। तीसरा है ब्रेक थ्रू पेन, वैसे मरीज को 2400 घंटे दवा का असर है
1: जी,
2: उसके बावजूद भी अचानक दर्द के तेज दौरे पड़ सकते हैं जिसको हम लोग ब्रेक थ्रू पेन कहते हैं
1: जी।
2: और अंतिम होता है फैंटम पेन, कभी कभी कैंसर के कारण कुछ अंगों को काट के अलग कर देना पड़ता है, जैसे कि पैर ही काट के अलग कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी मरीज को उस कटे हुए अंग में दर्द होता है जिसको फैंटम पेन कहते हैं। फैंटम का मतलब वो अंग वहाँ नहीं है लेकिन मरीज को दर्द फिर भी हो रहा है।
1: डॉक्टर साहब, कैंसर का पेन कितने प्रकार का होता है और जानना क्यों जरूरी है, इसकी बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। बातचीत में बढ़ते हैं आगे और आपसे ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, कैंसर का उपचार यदि हो रहा है मैनेजमेंट में क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं?
2: आजकल दर्द के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें विभिन्न विधाओं को एक साथ जोड़कर हम लोग दर्द का उपचार करते हैं
1: जी।
2: ये सारा दुनिया देख चुका है कि किसी एक विशेष प्रकार के इलाज से मरीज का दर्द दूर नहीं हो सकता, इसलिए डिफरेंट स्पेशलिटीज को डिफरेंट टेक्निक

0: को, अलग अलग तरीकों को हम लोग एक साथ मिलाकर उपयोग में लाते हैं, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निक कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसका मतलब कि दवाइयों से दर्द का निवारण
1: जी।
0: और ये भी 3 स्टेप होता है, जो प्रमुख तरीका है उसको हम लोग WHO पेन लैडर बोलते हैं, जिसकी 3 स्टेप होती हैं। पहले में जब पेन बहुत मामूली सा है तो स्टेप 1 बोलते हैं, जहां पर अक्सर पैरासिटामोल जैसी हल्की दवाइयां उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा होता है मध्यम दर्द, जहां स्टेप 2, इसमें कमजोर ओपियोइड जैसे कोडीन या ट्रामाडोल जैसी दवाइयों का उपयोग करते हैं। तीसरा होता है गंभीर दर्द, जहां पर स्ट्रॉन्ग या मजबूत ओपियोइड फेंटेनिल, मॉर्फिन या मिथाडोन का उपयोग हम लोग करते हैं। इनके अलावा बहुत सारे एडजुवेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दवाइयां जो स्वाभाविक रूप से दर्द में काम नहीं करती हैं, लेकिन जब उनको दर्द की दवाइयों के साथ दिया जाता है तो एक तो दर्द की दवाइयों का जो एक साइड इफेक्ट होने वाला है उसको कम करती हैं और पेन को बहुत हद तक कंट्रोल करती हैं। दूसरा एक स्टेप है एडवांस इंटरवेंशन। ये मैंने आपको बताया कि हम लोग किस तरीके से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं। इसके साथ साथ जब ये दर्द कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के द्वारा, तो हम लोग एडवांस इंटरवेंशन करते हैं, जैसे नर्व ब्लॉक, जो नसें जो नर्व पेन ले जा रही होती हैं, उनको हम लोकल एनेस्थीसिया और स्टेरॉइड का इंजेक्शन देके ब्लॉक करते हैं। कई बार इम्प्लांटेड पंप, दवाइयों से भरे हुए पंप शरीर में ही लगा देते हैं, और जिससे दवाई की मात्रा धीरे धीरे दर्द की जगह में जाती रहती है। इनको हम लोग इंट्राथिकल पंप्स बोलते हैं। एक होता है न्यूरो मॉड्यूलेशन, ये हमको मालूम है कि हमारा जो दर्द होता है वो नर्व्स के ही द्वारा चलता है, तो अगर हम लोग किसी तरीके से उस नर्व के जो ट्रांसमिशन है, जो दर्द ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें अगर व्यवधान उत्पन्न कर दें तो दर्द भी रुक जाता है। इसको हम लोग न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक से उसको बंद कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम है इंटीग्रेटिव और लाइफस्टाइल थेरेपी। आप जानते हैं आजकल हर बीमारी का लाइफस्टाइल थेरेपी से हम लोग ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। लाइफस्टाइल थेरेपी कुछ नहीं, हमारी जो जीवन की जो प्रक्रिया है, जो हम लोग दिन रात जैसा जीते हैं, जो दिनचर्या है, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, जिसमें खानपान शामिल है, जिसमें व्यायाम शामिल है, जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता अपने आप बढ़ती है, तो इसका भी आजकल बहुत उपयोग पेन मैनेजमेंट में हो रहा है।
1: डॉक्टर साहब, कैंसर उपचार में एक और आवश्यक पहलू है पैलिएटिव केयर, जिसके विषय में भी लोगों को शायद कम जानकारी है, तो इस विषय पर भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर पैलिएटिव केयर क्या है।
0: यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि पैलिएटिव केयर एक कैंसर मैनेजमेंट का बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को बहुत कम है, और जो जानकारी है भी वो भ्रांतियों से भरपूर है, मतलब गलत जानकारियां हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैलिएटिव केयर एक विशेष प्रकार की चिकित्सा देखभाल है, जो कैंसर जैसे गंभीर और जीवन को प्रभावित करने वाली बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को कम करने पर केंद्रित होती है।
1: जी। और इसे क्या अंतिम समय की देखभाल समझना चाहिए कैंसर के उपचार में?
0: ये आपने बिल्कुल सही पूछा, यही मरीजों के बीच में सबसे बड़ी भ्रांति है।
1: जी।
0: जब मरीज को पैलिएटिव केयर के लिए रेफर किया जाता है, या उनका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चल रहा होता है, और वो डॉक्टर कहते हैं कि आप पैलिएटिव केयर फिजिशियन को भी जाकर दिखा लीजिए, तो मरीज बहुत उदास हो जाता है, वो सोचता है, एकदम निराशित हो जाता है, वो सोचता है कि अब तो मेरा अंतिम वक्त आ गया है, ये कोई ऐसे डॉक्टर के पास मुझे रेफर कर रहे हैं जो अब मुझे अब ज्ञान देगा कि अब आप ध्यान में जाइए और योगा कीजिए, बट ये बात नहीं है,
1: क्योंकि डॉक्टर साहब परिस्थिति ही ऐसी होती है उस समय में, क्योंकि वो खुद ही परेशान होते हैं बहुत ज्यादा, और वो ये नहीं समझ पाते कि ये हमारे लिए हमारे हित में ही है।
0: तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर के इलाज में इसे अंतिम समय की देखभाल नहीं, बल्कि समाज का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
1: जी।
0: जो बीमारी के किसी भी चरण में वो डायग्नोसिस से शुरू होता है और मैनेजमेंट के अंतिम क्षण तक जाता है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया डॉक्टर साहब कि पैलिएटिव केयर को अंतिम समय की देखभाल नहीं समझना चाहिए, भ्रांति है। क्या भूमिका है कैंसर के उपचार में इसकी?
0: कैंसर के इलाज के दौरान पैलिएटिव केयर का मुख्य उद्देश्य रोगी और उसके परिवार, ये खाली मरीज के लिए नहीं बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स के लिए भी है।
1: बिल्कुल, उनका भी अहम रोल होता है इसमें,
0: या कि उनके जीवन की गुणवत्ता, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, में सुधार कैसे किया जाए। भूमिका को या पैलिएटिव केयर की भूमिका को हम लोग विभिन्न बिंदुओं में समझ सकते हैं।
1: जी।
0: जैसे शारीरिक लक्षणों का प्रबंधन, जैसे हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स, कैंसर

0: सर और उसके उपचार जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन से होने वाले दर्द, सांस की तकलीफ, उल्टी आना, कब्ज और थकान जैसे लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है।
1: जी।
0: भावनात्मक और मानसिक सहायता जैसे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो कैंसर का पता चलने पर मरीज और परिवार दोनों ही तनावपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं।
1: जी।
0: और उस समय पैलिएटिव केयर टीम काउंसलिंग के जरिए डिप्रेशन, चिंता और डर को दूर करने में सहायता करती है।
1: जी।
0: तीसरा मुख्य जो भ्रांति है
1: जी।
0: कि जब पैलिएटिव केयर चलेगी तो मतलब इलाज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इलाज के साथ तालमेल बिठाना है। यह कैंसर के मुख्य इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी को रोकता नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ चलता है। यह मरीज को इलाज सहन करने और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तैयार करता है। अनावश्यक चिकित्सा से भी यह बचाव करता है। यह मरीज को बिना जरूरत की महंगी जांचों से बार बार अस्पताल में भर्ती होना या अंतिम समय में वेंटिलेटर जैसी कष्टदायक प्रतिक्रियाओं से बचाने में मदद करता है, जिससे इलाज का आर्थिक बोझ भी कम होता है।
1: जी। तो फिर ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है डॉक्टर साहब, कहाँ कहाँ दी जा सकती है पैलिएटिव केयर?
0: पैलिएटिव केयर की सुविधा अगर हम जमशेदपुर के संदर्भ में बात करें तो ये हॉस्पिटल के इंडोर एवं आउटडोर में उपलब्ध होती है।
1: जी।
0: और अब ये होम केयर एंड हॉस्पिस सेंटर्स में भी प्रदान की जाती है।
1: जी, ये होम केयर क्या है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: जी जी, होम केयर का मतलब है घर पर देखभाल।
1: जी।
0: पैलिएटिव केयर न केवल अस्पतालों में बल्कि होम केयर सेवाओं के माध्यम से मरीज के घर पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें मरीज अपने परिवार के बीच रहकर शांति महसूस करता है। जमशेदपुर में कैन सपोर्ट के द्वारा यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें मेडिसिन एवं अन्य मेडिकल हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी शुल्क के निशुल्क दी जाती है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स घर घर जाकर मरीज की देखभाल करते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रोताओं को दी। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर, इन दोनों में क्या अंतर है?
0: जी, अक्सर पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर को लोग एक ही समझते हैं।
1: जी।
0: लेकिन मैंने आपसे शुरू में बताया कि पैलिएटिव केयर मरीज के पहले दिन कैंसर के डायग्नोसिस के साथ शुरू होती है, और हॉस्पिस केयर मरीज का जब सारा इलाज उसका कंप्लीट हो चुका होता है
1: जी,
0: उस समय में दी जाने वाली केयर को हम लोग हॉस्पिस केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर बोलते हैं।
1: ओके।
0: तो हॉस्पिस केयर तब दी जाती है जब इलाज के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, इलाज मतलब कैंसर के इलाज के रास्ते बंद हो जाते हैं, और मरीज के पास जीवन के 6 महीने या उससे कम समय बचा होता है, इसलिए इसे जीवन के अंतिम चरण की देखभाल या एंड ऑफ लाइफ केयर भी कहा जाता है। मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जमशेदपुर में ये सारी सुविधाएं रीजनेबल कॉस्ट पर उपलब्ध हैं, और गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता भी इस अस्पताल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
1: डॉक्टर अशोक जादौन, आपने हमारे श्रोताओं को कैंसर के उपचार में दर्द निवारण एवं पैलिएटिव केयर की भूमिका इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा है हमारे श्रोता इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। आपका हमारे कार्यक्रम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कैंसर के उपचार में दर्द निवारण और पैलिएटिव केयर की भूमिका, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक जादौन। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म अजनबी का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, आप समाचार प्रसारित होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़

0: स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. During his visit, the two leaders expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between India and New Zealand. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced the diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. Prime Minister Modi has expressed gratitude to the government and people of Australia, as well as Australian Prime Minister Anthony Albanese, for the warm hospitality

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं जयनंदन तिवारी और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत।

0: झारखंड के लोकगीत, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य समकक्षीयेण सह वार्तालापं विधातुं द्विदिवसीय यात्रायां ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। केन्द्रेण मादक द्रव्याणां नियमेषु संशोधनं कृत्वा अधिक मद्ययुक्तानां औषध सूत्रीकरणानां विनियमनं विहितम्। उत्तराखंड राज्ये अत्यधिक वृष्ट्यै ऋतु विभागेन रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ऑकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात्, यत्र भारतस्य न्यूजीलैंड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ समग्र

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी। कृषक मित्रों, आज के अंक में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस पर झारखंड में मत्स्य पालन की संभावनाएं तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे सेवानिवृत्त मत्स्य पालन पदाधिकारी सह निदेशक फिशरीज रांची के डॉक्टर H.N. द्विवेदी जी। सुनिएगा कुछ गीत और जरूरी सूचनाएं और जानकारियां, लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में। कृषक मित्रों, विकसित भारत जी राम जी योजना, विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन

0: गारंटी भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई एक नई रोजगार गारंटी योजना है जो मनरेगा की जगह 1 जुलाई 2026 से ले ली है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलती है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार और विकास से संबंधित एक कानून है। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करके और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप ढालती है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी कि वीबीजी रामजी योजना अधिनियम 2025 केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद इसी महीने की 1 जुलाई 2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गई है। यह योजना मनरेगा के जगह पर लाई गई है। यह अधिनियम वैसे प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। प्रत्येक राज्य सरकारों को इस अधिनियम के लागू होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं को अधिसूचित करना अनिवार्य है। कृषक मित्रों, यहां पर आपको बता दूं कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्य प्रारंभ होने की तिथि पर बीबीजी रामजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकते हैं। इन कार्यों को सुचारू रूप से स्थानांतरित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करते हुए इन्हें पूरा करने की प्राथमिकता भी दी जाएगी कि सार्वजनिक परिसंपत्तियां अधूरी ना रह जाएं और सामुदायिक लाभ जो है वो जारी रहे। योजना के मुख्य बिंदु के बारे में भी जान लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी क्या होगी? योजना के तहत दैनिक मजदूरी बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन की गई है। बजटीय प्रावधान क्या होगा? इसके प्रभावी संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारी वित्तीय सहायता यानी प्रथम किस्त के रूप में 25,000 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो जारी की गई है। इसका उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं बल्कि जल संरक्षण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। मित्रों, यह थी जानकारी विकसित भारत जी रामजी योजना के बारे में। मित्रों, आज 10 जुलाई का दिन है। जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में मछली पालक किसान भाई बहनों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम को सम्मान और समर्थन देना है। आज का यह दिवस सभी मत्स्य पालक भाई बहनों के लिए समर्पित रहता है ताकि आप अपने हक और अधिकारों को जान सकें। भारत सरकार और राज्यों की सरकार आप सबके कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाती हैं। यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सदा जागरूक रहते हैं तो आप कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ त्वरित उठा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी जीवन में व्यापक सुधार भी आएगा और आप अपने जीवन को बेहतर और समुन्नत भी बना पाएंगे। कृषक मित्रों, हमारी आज की भेंटवार्ता भी आप सब मछली पालक भाई बहनों से ही संदर्भित है। विषय है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस पर झारखंड में मत्स्य पालन की संभावनाएं तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं। भेंटवार्ताकार हैं सेवानिवृत्त मत्स्य पालन पदाधिकारी सह निदेशक फिशरीज रांची के डॉक्टर HN द्विवेदी जी और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंटवार्ता।
1: ग्रामीण किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाने का उद्देश्य जो है वो यह है कि देश में मछली पालक किसान भाई बहन, मछुआरा और मछली पालन से जुड़े हुए जो भी हितधारक हैं उनका किस तरीके से आगे सम्मान मिले, किस तरह से उनको समर्थन मिले, इन सब सारी बातों पर जोर दिया जाता है इस दिवस के दिन। तो इस दिवस के दिन आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर HN द्विवेदी जी जो हमें जानकारी देंगे राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के बारे में और मत्स्य विभाग से जुड़े हुए जो भी जानकारियां हैं वो किस तरीके से हितधारक हो सकता है मछली पालन भाई बहनों के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एच एन द्विवेदी जी जो है वो अभी अभी तुरंत सेवानिवृत्त ही हुए हैं, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी जानकारी है, तो आइए हम इनकी जानकारियों को साझा करते हैं। डॉक्टर एच एन द्विवेदी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: सभी झारखंड राज्य के मत्स्य कृषक भाइयों को जोहार, और हमें अवसर देने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, आभार। मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 10 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, उसका बैकग्राउंड जानना ज्यादा जरूरी है। इसमें एक डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर अली कोहनी ने प्रेरित प्रजनन का काम किया था, और ये 10 जुलाई को सफलतापूर्वक इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, जिसको कहते हैं मछली में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी प्रेरित प्रजनन का सफलतापूर्वक ये किया था, निष्पादन किया था। तो उसी के याद में 10 जुलाई 1957 में उनके द्वारा जो किया गया था, उसी की याद में भारत सरकार ने 2001 में इसको नोटिफाई कर दिया, मैंने कि पूरा राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के रूप में 10 जुलाई को मनाया जाता है, नेशनल फिशरमैन डे के रूप में। तो फिश फार्मर्स डे के रूप में, नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में इसे मनाया जाता है। प्रेरित प्रजनन वास्तव में कहा जाए तो नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक माइलस्टोन है, इसके बाद आगे बहुत प्रगति की। प्रेरित प्रजनन का मतलब होता है कि मनचाही मछलियों से हम उसको इंड्यूस्ड करके हम मछली का बीज तैयार करें। पहले नदी से रोहू, कतला, नैनी, जिसको मृगल कहते हैं, ये सभी जो वांछित मछलियां, जो मछली पालन जिनका तालाबों में किया जाता है प्रजातियों का, उसका प्रेरित प्रजनन करके वांछित मछलियों का बीज तैयार करना ही प्रेरित प्रजनन होता है। तो पहले नदी से होता था, जहाँ पूरा प्योर नहीं मिलता था, कलेक्शन होता था, अब शुद्ध रूप से मिलता है, और हैचरी में इसका मत्स्य उत्पादन पूरे देश में पूरा बहुत ही काफी संख्या में होता है कॉमर्शियली। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तविकता से कॉमर्शियल रूप से मत्स्य पालन को देने के लिए एक माइलस्टोन हुआ। तो इसीलिए हीरालाल चौधरी के याद में हम लोग ये करते हैं, ताकि इस दिन सभी मत्स्य कृषक भाई लोगों को एक साथ बैठा कर पूरी जानकारी दी जा सकती है कि कैसे विकास हुआ मछली पालन का, कैसे आगे की योजनाएं चल रही हैं राज्य में। अभी तो झारखंड राज्य में बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, खास करके मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, 90% अनुदान पर मत्स्य स्पॉन दिया जा रहा है, फीड दिया जा रहा है उसके लिए, जाल दिया जा रहा है, और भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं मत्स्य फिश फार्मर्स के कल्याण के लिए। यहाँ तक कि 5 लाख तक का उनका मुफ्त बीमा भी कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जाती है, जिसमें जितनी भी योजनाएं हैं, तालाब निर्माण का, फिर मछली के बीज बनाने के लिए नर्सरी तालाब का, हैचरी निर्माण के लिए, रियरिंग तालाब के निर्माण के लिए, अब तो नए नए तकनीक आ गए, केज कल्चर आ गए, फिर रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, हाईटेक सिस्टम आ गया, बायोफ्लॉक सिस्टम आ गया, यहाँ तक कि अब तो मछली का खाना पहले लोग नहीं दे पाते थे, तो अब उसके लिए फिश फीड मिल भी तैयार हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, ताकि मछली को खाना दिया जा सके और उसका ग्रोथ अच्छा लिया जा सके। तो इस ढंग से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तो तालाब के अलावे डैम में तो केज में मछली पालन होता ही है, पेन कल्चर के माध्यम से मछली पालन होता है, डैम में मत्स्य कृषक भाइयों के लिए मछली का बीज डैम में छोड़ा जाता है, ये सभी योजनाएं हैं, और एक नई तकनीक आई है जो रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम है, और बायोफ्लॉक तालाब से हट के जमीन पर ही टैंक बनाकर किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। तो कहने रिवॉल्यूशन इन द सेंस में कि तालाब से 40 गुना 50 गुना तक ज्यादा उतना ही पानी में मछली उत्पादन लिया जाता है। तो इस ढंग से बहुत ही क्रमिक विकास हुआ है। तो मैं मत्स्य कृषक भाइयों को कहूंगा कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़े और साथ ही साथ अब हमारा हम लोगों के लिए मत्स्य कृषक भाइयों के

0: लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है रांची में, वहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, उसके लिए अलग अलग ढंग से विशिष्ट प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आप अपने जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करके आप जरूर से जरूर प्रशिक्षण का लाभ उठाएं, और कोई भी मत्स्य कृषक भाई जो अपना तालाब बनाने के लिए भी इच्छुक है या मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं, इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो उनको जरूर से जरूर जुड़ना चाहिए। और यह बताते हुए हमको बहुत ही गर्व है कि कृषि के क्षेत्र में जितनी प्रगति और जितना ग्रोथ मछली पालन में है, जितनी कम समय में जितनी आमदनी आप मछली पालन से कर सकते हैं, उतना किसी भी विधा से नहीं किया जा सकता है। और मछली पालन करने से पहला लाभ तो यह है कि आप जल का संरक्षण भी करते हैं, सरफेस वाटर जो है मीठा जल का संरक्षण उसका करते हैं, पानी को बचाते हैं, तालाब में रखते हैं और मछली पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी मत्स्य कृषक भाई से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा तालाब भी बनाएं, और जो भी मत्स्य मछली पालन के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हो, चाहे डैम हो, ताल तलैया हो, चाहे अपना तालाब हो, या फिर केज में मछली पालन हो, चाहे आप RAS और बायोफ्लॉक के माध्यम से भी मछली पालन करना चाहते हैं, या बीज उत्पादन करना चाहते हैं, या हैचरी बनाना चाहते हैं, तो आप आके जुड़े। साथ ही साथ मार्केटिंग के लिए भी पूरी सुविधाएं उपलब्ध है, मोटरसाइकिल आइस बॉक्स मिलता है, फिर इसके बाद ऑटो रिक्शा मिलता है, ई रिक्शा मिलता है, फिर इसके बाद पिकअप वैन मिलते हैं, तो आपको मार्केटिंग की भी सुविधा, आप यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए मछली को, मछली के बीज को ले जाने के लिए भी आपको अनुदानित दर पर सरकार के द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। तो आइए हम सब मिलकर 10 जुलाई को एक सामूहिक प्रयास करें और झारखंड राज्य को अग्रणी राज्य में ले चलें। वैसे आपको यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग केंद्र में मछली पालन में अग्रणी राज्य में है, लीडिंग स्टेट है, और साथ ही साथ अभी एक नया आयाम पर्ल कल्चर का जुड़ा है, उसमें भी बहुत ही पर्ल कल्चर में तो हम लोग भी लीडिंग स्टेट में को चुना गया है भारत सरकार द्वारा, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर मत्स्य कृषक भाई मछली पालन में प्रगति करें, आपकी प्रगति ही राज्य की प्रगति है।
1: प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी अलनीनो का प्रभाव जो है गहराता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन भी इससे बहुत असर कर रहा है, तो मछली पालन के व्यवसाय में यदि कोई जुड़े हुए हैं तो उनका जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ सकता है?
0: जलवायु परिवर्तन से प्रभाव तो पड़ेगा ही, बहुत अचानक ज्यादा पानी आ जाए तो ओवरफ्लो हो जाता है तालाब, उससे अपने मेल की सुरक्षा करें और अपना देख लें कि कैसे क्या हो सकता है। अब दूसरी बात है कि कम वर्षा होने पर तालाब में जितना पानी रहेगा, जब तक रहेगा, खूब बढ़िया मछली उत्पादन हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तालाब में तो पानी रहेगा ही। धान की खेती के जहाँ तक सवाल है, वो एक पार्टिकुलर समय में होता है, और कोई भी फसल के लिए तो ऐसी स्थिति में उनको समय पर पानी चाहिए, और समय पर पानी और संसाधन नहीं उपलब्ध होने पर उनको कठिन होती है। लेकिन तालाब में पानी आए, जितना पानी रहे, जितना दिन पानी रहे, साल भर रहे, 8 महीना रहे, 6 महीना रहे, उसमें हाईटेक विधि से मछली का उत्पादन किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
1: तो किसान भाई बहनों, ये थे डॉक्टर HN द्विवेदी जी जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज का दिन आप ही को समर्पित है, तो भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं आपके कल्याण के लिए, इस विषय पर भी बहुत अच्छी जानकारियों को साझा कर रहे थे। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, भारत सरकार और झारखंड राज्य सरकार दोनों का बहुत ही प्रमुख इसमें योजनाएं हैं, दोनों मिलकर काम करें, दोनों का शेयर है, और दोनों बिना झारखंड सरकार के राज्य की प्रगति नहीं होती, और भारत सरकार तो खैर लीड कर ही रही है, तो राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, और अपनी भी अलग से स्टेट की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है भारत सरकार का वो तो है ही, उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए तो और बता दूं कि 90% अनुदान है आज के डेट में, और ऐसे महिलाओं के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए 60% अनुदान है, और एक विशेष अभियान में अनुसूचित जनजातियों के लिए

90% का अनुदान है और सामान्य जो भी है इसके अलावे सामान्य के लिए 40% अनुदान है। धन्यवाद आपको भी और हमारे सभी मत्स्य कृषक भाइयों को फिर से बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।

किसान भाई बहनों, अभी आप राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस पर झारखंड में मत्स्य पालन की संभावनाएं तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं विषय पर भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटवार्ताकार थे सेवानिवृत्त मत्स्य पालन पदाधिकारी सह निदेशक फिशरीज रांची के डॉक्टर HN द्विवेदी जी। बाह्य ध्वनि अंकन पर टेलीफोनिक आधारित थी यह भेंटवार्ता। किसान भाई बहनों, आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम और फसल सलाह पर। किसान भाई बहनों, कल दिनांक 11 जुलाई 2026 के मौसम के संदर्भ में कहा गया है कि आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, दिन उमस भरा रहेगा, कहीं कहीं बारिश और कहीं कहीं धूप भी खिली रह सकती है, हवा का दबाव भी बना रहेगा और इसकी दिशा होगी पूर्वोत्तर से दक्षिण की ओर और रफ्तार रहेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी अधिकतम 86% और न्यूनतम 43%। अब एक नजर बाजार भाव पर। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी जिला पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त बाजार भाव कुछ इस तरह से है। चावल में उसना उत्तम किस्म का भाव रहा 4550 से 5550 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम 3410 से 3760 रुपए प्रति क्विंटल, अन्य 2860 से 3370 रुपए प्रति क्विंटल। अरवा उत्तम किस्म का भाव रहा 5670 से 6250 रुपए, मध्यम 3410 से 4420 रुपए और अन्य 3210 से 3420 रुपए प्रति क्विंटल। दालों में अरहर का भाव रहा 11010 से 13010, वहीं मोटा दाल का भाव रहा 7330 से 9000 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल का भाव रहा 7600 से 9000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल का भाव रहा 11000 से 11600 रुपए प्रति क्विंटल, साधारण चना का भाव रहा 6000 से 7100 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं में लाल रंग वाली गेहूं का भाव रहा 3500 से 3900, सफेद रंग वाली गेहूं का भाव रहा 3400 से 3700 रुपए प्रति क्विंटल, आटा का भाव रहा 3200 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं मैदा का भाव रहा 3800 से 3900 रुपए प्रति क्विंटल, मोटा आलू का भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल और बड़ा आलू का भाव रहा 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल का भाव रहा 2700 रुपए प्रति टीना जबकि रिफाइन तेल का भाव रहा 2275 रुपए प्रति टीना, प्याज का भाव रहा 1700 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर का भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल, गुड़ का भाव रहा 4000 से 4600 रुपए प्रति क्विंटल जबकि चीनी का भाव रहा 4300 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल, खीरा का भाव रहा 3000 से 3300 रुपए प्रति क्विंटल, नींबू प्रति पीस का भाव रहा 8 रुपए। फलों की बात करें श्रोता मित्रों, तो सेव में बड़े आकार वाले सेव का भाव रहा 260 रुपए प्रति किलो, मध्यम आकार वाले सेव का भाव रहा 150 रुपए प्रति किलो और छोटे आकार वाले सेव का भाव रहा 130 रुपए प्रति किलो। किसान भाई बहनों, यह थी बाजार भाव की सूचना। बाजार भाव की सूचना के बाद आइए सुनते हैं वीना पानी महतो और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत।

किसान भाई बहनों, अभी आप बिना पानी महतो और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीत के इस प्रसारण के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम कृषि जगत बस यहीं तक। अपने रेडियो मित्र अनिमेश को दीजिए अनुमति, लेकिन इस बात के साथ कि अपनी धरती माँ और पर्यावरण की सेहत के लिए प्लास्टिक के उपयोग को ना कहेंगे और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करेंगे। डेली 15 से 20 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी और हमारी दुनिया मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिन का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशक अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने पर्यटन नीति 2026 और होमस्टे नीति के माध्यम से धार्मिक, इको, साहसिक और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना प्रस्तुत की। उन्होंने निवेशकों से झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन और रोजगार सृजन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य निर्वाचन

0: अधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए2 की संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के विरुद्ध निलंबन सहित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण संग्रहण और डिजिटाइजेशन में तेजी लाने तथा 14 जुलाई को सभी बूथों पर बीएलओ बीएलए2 बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि समीक्षा के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान तेज करने, सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
1: डीजी मैडम की अध्यक्षता में आज सभी जिले का जो परफॉर्मेंस है क्राइम और नक्सल सिनेरियो पे, उस पे विशेष रूप से चर्चा की गई और जो नक्सल अभियान तथा आने वाले फेस्टिवल्स और क्राइम रिलेटेड जो सिनेरियो है उसको लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। और विगत कुछ महीनों में काफी सारे ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, जिसके वजह से नक्सल का स्ट्रेंथ अभी काफी कम हो गया है और आने वाले समय में जो बचे हुए ग्रुप्स के ऊपर हम लोगों की तरफ से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
0: बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
2: जितने संबंधित पदाधिकारी या कर्मी हैं, उन सबको शोकॉज पूछा गया है और शोकॉज पूछने के उपरांत अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया तो उस पर अग्रतर कार्रवाई होगी। अभी देखते चल रहे, आगे आगे और भी कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहें, विभाग गंभीर है और गंभीरता के साथ दोषियों पर कार्रवाई करेगी।
0: धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में 15 वर्ष बाद अदालत ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित 30 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2011 में बीसीसीएल आवासों से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी रांची की टीम ने बुढ़मो अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को म्यूटेशन की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। परिवादी सुबोध कुमार ने एसीबी से रिश्वत लिए जाने की शिकायत की थी। जांच में यह मामला सही पाया गया। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताराटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि आरोपी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर और एपीके फाइल भेजकर लोगों से ठगी करते थे।

0: पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, इनका जो एक मिलजुल के सहयोगपूर्ण कार्य करना, स्पीडी ट्रायल करना, और उनके माध्यम से उन लोगों पर इतना दबाव बन गया है कि वो अब ये प्रयास करते हैं कि वो या तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से संदेश है सभी लोगों को कि अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई हैं उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे।
1: गिरिडीह की विशेष एनडीपीएस अदालत ने वर्ष 2010 में दर्ज अवैध अफीम की खेती और तस्करी से जुड़े मामले में 27 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यह मामला लुकैया नयनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जिसमें 29 लोगों पर अवैध रूप से अफीम की खेती और कारोबार करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं कर सका। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां चन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर मां को 56 प्रकार के व्यंजन और ऋतु फल अर्पित कर राज्य तथा देश की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाले इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है।
2: आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। आज बहुत ही तिथि महत्वपूर्ण है और गर्मी का समय खत्म हो गया, बरसात ऋतु चालू हो चुका है, ताकि आसपास क्षेत्र में अच्छे से फसल हो, खेती हो, भरपूर रहे, आनंद रहे। और ये तो जागृत देवी है कि माँ हर मनोकामना भक्त को पूरा करती है।
1: झारखंड की अंडर 18 बालक रग्बी टीम जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। यह प्रतियोगिता गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित हो रही है। टीम की कप्तानी अजीत नाग कर रहे हैं, जबकि सालमन भेंगरा कोच और किशन उराव टीम मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिनों का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मो के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले में SIR का काम तेजी से चल रहा है। गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद बताया कि 60% फॉर्म वितरित कर दिया गया है और BLO घर घर जाकर लोगों को फॉर्म पहुंचा रहे हैं। DC ने गांडे क्षेत्र के कई बूथों पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निदान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। गरीब लोग पक्का मकान पाकर बेहद खुश हैं।
2: मेरा नाम रजिया खातून है, दाढ़ी ढूंढ रखा है। दिक्कत तो सर मिट्टी का घर तो परेशानी था, अब अपने बाल बच्चों के साथ में अभी हम बहुत खुश हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करते हैं, अब हमको पक्का का घर मिल गया है।
1: गिरिडीह जिले के पंचायतों के रख रखाव के लिए मिली राशि को मुखिया द्वारा खर्च नहीं किए जाने पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष का 3 करोड़ 14 लाख रुपया

0: खर्च नहीं हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में भी 1,55,00,000 रुपए का आवंटन प्राप्त हो गया है।
1: गिरिडीह जिला के 344 पंचायतों के 6 पंचायत सचिवों को खर्च करने के लिए सुदृढ़ीकरण की राशि पिछले वित्तीय वर्ष में दी गई थी, लेकिन मुखियाओं के द्वारा अभी तक 3,14,00,000 रुपया अभी तक खर्च नहीं किए हैं, जबकि इस वित्तीय वर्ष में भी उनके लिए सुदृढ़ीकरण मद में राशि आ गई है। उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना था, हम लोगों ने मांग की थी, अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उनके द्वारा जमा नहीं की गई है। वर्तमान में जो राशि आई है इस वित्तीय वर्ष की, उस राशि को हम लोग तभी उन मुखियाओं को देंगे जो मुखिया पिछले वित्तीय वर्ष की सुदृढ़ीकरण मद में जो राशि आई थी उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे, और साथ ही जो मुखिया खर्च नहीं किए हैं उनके विरुद्ध कारण पीछा भी करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि किस कारण से किस परिस्थिति में उस राशि को उन्होंने खर्च नहीं की।
0: मनरेगा योजना से किसानों ने आम बागवानी लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। गिरिडीह जिले के पीरटाड़ के किसान कहते हैं कि उन्हें आम बेचकर अच्छा फायदा हुआ है।
2: शेखर महतो है, पीरटाड़ प्रखंड ग्राम बांध का ये हमारा गांव है। प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को पता चला कि नरेगा से सरकार मुफ्त में आपको 3-4 लाख रुपया पैसा भी 1 एकड़ में देती है, और मैंने आपका मैंने एक स्वामित्व भी हो जाता है बागवानी में, आप खुद उसका ओनर भी हो गए बागवानी का। तो इस जानकारी मिला और किसी माध्यम से हमको 2-2.5 एकड़ में मैंने को बागवानी करने का मौका मिला, और मैंने जो एकदम बंजर भूमि था, जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए, और बागवानी मेरा मैंने इतना शानदार रहा कि हम लोग तो लगभग 50,000 का अभी तक आम बेच चुके हैं, और कम से कम 2,25,00,000 तक और आम बेचेंगे।
0: जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों से आग्रह किया है कि वर्षापात के अभाव में मोटे अनाज के साथ साथ दलहन एवं तेलहन की खेती करें। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
3: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 7:16 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी

बरसात की बूंदों के संगीत का मजा ले रही हूँ, तेरे आने के पल पल दिन गिन रही हूँ। एक गर्भवती महिला के दिल में, मन में बहुत सारे जज्बात उमड़ते हैं और साथ ही यह भी चिंता रहती है कि हम अपने आने वाले बच्चे का स्वागत किस तरह से करें, उसका ख्याल गर्भस्थ रहते हुए कैसे करें कि वो स्वस्थ पैदा हो, और जब वो आए तो हम उसका कैसे ख्याल रखें कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। महिलाओं की स्वास्थ्य पत्रिका कल्याणी में आज मैं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त जयश्री, आप सभी को मेरा नमस्कार जोहार। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई तरह के शारीरिक और हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस समय माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी कदम जरूर उठाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए क्योंकि ये बेहद जरूरी है। दोस्तों, गर्भ में शिशु एक लिक्विड थैली में रहता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ये द्रव बच्चे को बाहरी झटकों से बचाता है और उसके अंगों के विकास में मदद करता है। शरीर में पानी की कमी होने से इस द्रव का स्तर कम हो सकता है, जो शिशु के लिए जोखिम भरा है। दोस्तों, पानी शरीर में रक्त के जरिए विटामिन, मिनरल्स और जरूरी हार्मोनों को माँ से बच्चे तक पहुँचाने का मुख्य माध्यम है। पर्याप्त पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। गर्भावस्था के दौरान दोस्तों हार्मोनल बदलावों के कारण पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, जिससे कब्ज और गैस की समस्या आम हो जाती है। भरपूर पानी पीने से पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम करती है। दोस्तों, इस समय महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अधिक पानी पीने से टॉक्सिन्स यानी कि जो हानिकारक तत्व हैं और बैक्टीरिया यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अक्सर गर्भावस्था में हाथों, पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है। जब शरीर को कम पानी मिलता है तो वो पानी को रोकने यानी वाटर रिटेंशन करने लगता है, जिससे सूजन बढ़ती है। पर्याप्त पानी पीने से ये समस्या काफी कम हो जाती है। सामान्य तौर पर एक गर्भवती महिला को रोजाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर यानी 8 से 12 ग्लास पानी और तरल पदार्थ जरूर पीना चाहिए, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी या सूप।

0: गर्भावस्था के दौरान सादा पानी, सिर्फ सादा पानी पीना कभी कभी उबाऊ हो सकता है दोस्तों, खासकर तब जब मॉर्निंग सिकनेस या मतली की समस्या हो। ऐसे में शरीर को हाइड्रेटेड रखने और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने के लिए कुछ अन्य स्वस्थ और सुरक्षित पेय पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि नारियल पानी। ये गर्भवती महिलाओं के लिए प्रकृति का वरदान है दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। ये शरीर में पानी की कमी को तुरंत दूर करता है और थकान और चक्कर आने की समस्या से राहत देता है। ये सीने में जलन को भी शांत करता है। और घर पर निकाला हुआ ताजा जूस विटामिन का बेहतरीन स्रोत है दोस्तों। अनार का जूस हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, संतरे का जूस विटामिन सी और फोलेट के लिए, और चुकंदर गाजर का मिक्स जूस बेहद फायदेमंद है। बाहर मिलने वाले खुले जूस या पैकेज्ड जूस से बचें, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का खतरा और एक्स्ट्रा शुगर होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स इस समय कैल्शियम की जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं, जैसे कि छाछ न सिर्फ शरीर को ठंडा रखती है बल्कि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं और गैस और एसिडिटी से बचाते हैं। अगर आपका जी मिचला रहा हो दोस्तों, तो नींबू पानी एक बेहतरीन विकल्प है। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और इसमें थोड़ा सा काला नमक और पुदीना मिलाकर पीने से मॉर्निंग सिकनेस और मतली से तुरंत आराम मिलता है। कैफीन यानी कि चाय या कॉफी का सेवन गर्भावस्था में सीमित करना चाहिए दोस्तों, इसलिए हर्बल एक विकल्प है। हल्की अदरक वाली चाय या पुदीने की चाय पीने से पेट को आराम मिलता है और उल्टी आने की इच्छा भी कम होती है। और हाँ दोस्तों, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। कच्चा दूध या उनसे बने पेय पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। पैकेट बंद और सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स और बहुत ज्यादा शुगर होती है। और चाय कॉफी भी थोड़ा कम ही पिए, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो गर्भावस्था में पानी का बहुत ख्याल रखें, पानी पीना बहुत जरूरी है पर्याप्त मात्रा में। श्रोता दोस्तों, हम तो अभी बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं को कि पर्याप्त पानी पीना उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक और बीमारी है जो हमारी आम महिलाओं में घर कर गई है। जी हाँ दोस्तों, वो है थायराइड की समस्या। तो महिलाओं में थायराइड की समस्या विषय पर आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर रीना कुमारी और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, आज बातें महिलाओं में थायराइड की समस्या पर। आज के दिनों में थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है, खासकर महिलाओं में। ये क्यों होता है और इसका क्या असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना कुमारी। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, थायराइड वास्तव में हम कहते किसे है?
2: थायराइड एक ग्लैंड रहता है
1: जी,
2: वो हर किसी के शरीर में रहता है। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है, जो महिलाएं जो है उनके जेनिटल सिस्टम में जो है, जो भी उनका विकास का जो भी ऑर्गन सब है, उसके साथ थायराइड ग्लैंड का अच्छा खासा उसका संबंध रहता है। जैसे कि है यूट्रस है, ओवरीज है, यूट्राइन ट्यूब है, आप ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। थायराइड ग्लैंड में तीन प्रकार का हार्मोन्स जो है उससे सिक्रीशन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है T3 और एक होता है T4। ये जो थायराइड हार्मोन जो है वो सीधे जो है ओवेरियन एक्टिविटी, ओवरी जहाँ से हम लोग का अंडा बनते हैं, उससे थायराइड ग्लैंड का सीधा संबंध रहता है। मासिक चक्र हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, उस दौरान जो है आपका ये थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा उस समय अहम भूमिका रहता है।
1: कैसे महिलाओं को पता चले कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड है
2: जी,
1: वहाँ पे कुछ समस्या आ रही है?
2: अगर थायराइड ग्लैंड का जो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन अगर कम होता है, जिसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों जो है, ये दोनों अगर कोई महिला को अगर रहता है, उस दौरान भी जो है आपका ये अनियमित यूटराइन ब्लीडिंग होगा, अनियमित मासिक चक्र होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये अक्सर मिलेगा आपको मेनोरेजिया माने अत्यधिक रक्तस्राव,
1: अच्छा।
2: उस केस में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म मिलेगा, या फिर मान लीजिए कि उसका मासिक चक्र बहुत लंबा हो रहा है, 35 से 40 दिन का हो जा रहा है, तो ये सब के चलते जो है आपका वो सिक्रीशन कम होने लगता है थायराइड ग्लैंड का। कभी कभी तो हम लोग को मिलता है किशोरावस्था में एमेनोरिया हो जाता है, मीन्स आपका मासिक चक्र पूरा बंद हो जाता है। कभी कभी हम लोग को सुनने को मिलता है कि नहीं, वाकई बताती हैं महिलाएं कि नहीं, हमारा बच्चा नहीं रुक रहा है।
1: अच्छा,
2: ये क्यों हो रहा है कि रिकरेंट मिसकैरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, बार बार जो है बच्चा खराब हो जा रहा है, तो उस दौरान भी हम लोग थायराइड जांच करते हैं। उसके बाद कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा अगर हार्मोन्स का सिक्रीशन हो जाता है, उसको हम लोग

0: और थायरोडिज्म कहते हैं, वो आपका हो जाता है, दो तीन केस उसमें मिलता है, जैसे कि एनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन हम लोग उनको कहते हैं जैसे कि डिलीवरी के तुरंत बाद जो साइकिल जो रहता है उसको एनओव्यूलेशन कहते हैं, या तो फिर मान लीजिए जिसका मासिक चक्र बंद हो गया है या फिर बंद होने वाला जो है उस दौरान जो आपका जो बदलाव आता है महिलाओं के शरीर में उसको एनओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। तो एनओव्यूलेटरी उस समय भी अगर किसी को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो उस समय भी हम लोग थायरॉयड का हम लोग जांच कराते हैं, तो उसमें जो लेवल जो है बढ़ा हुआ मिलता है, हाइपरथायरॉयड मिलता है, तो उसमें हम लोग एंटी थायरॉयड कुछ मेडिसिन्स देते हैं, कुछ दवा देते हैं। हाइपोथायरॉयड जो थायरॉयड हॉर्मोन्स का जो लेवल जो घटने उसको हाइपोथायरॉयड जो मैं बोल रही हूँ वो आपका डिलीवरी के तुरंत बाद हाइपर प्रोलेक्टिनिमिया एक वर्ड आता है, उसमें क्या होता है अत्यधिक अत्यधिक स्तन का सिक्रीशन होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उस केस में भी जो है उसमें जो है थायरॉयड हॉर्मोन्स को है घट जाता है
1: जी।
0: तो इसलिए जो है हम लोग हर महिला जो भी किशोरावस्था से लेके जो महीना बंद होने का बाद जो पोस्ट मेनोपॉजल जिसको बोलते हैं इन सारा केस में जो है हम लोग थायराइड की हम लोग जांच करते हैं।
1: ये तो आपने बताया कि महिलाओं में थायराइड की जो समस्या होती है तो उनके स्वास्थ्य पे क्या असर होता है
0: जी,
1: लेकिन इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे महिला इससे बचे कि ताकि थायराइड की समस्या उन्हें ना हो।
0: देखिए ये तो जब मासिक चक्र जब शुरू होता है आरंभ होती है उस समय एक बार हमारा सारा जांच हम लोग को कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है उनको हम लोग बोलते हैं कि जो जो खाद्य पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं, बाहरी चीज खाने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मना करते हैं, बाहरी चीज अभी तो बहुत मिलावटें सब आ रही है, वो सब सीधा असर पड़ता है हमारे शरीर पर।
1: थायराइड की समस्या अगर किसी को है तो उसे आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, ये कहाँ तक सही है?
0: ये तो है बट उसके लिए वो कुछ कारगर रहता है, बट ये नहीं कि वो पूरी तरह से उसको मतलब निदान नहीं है।
1: अच्छा।
0: लेकिन ये है कि हम लोग खाने में हम लोग उनको बोलते हैं कि नहीं वो नमक जो है थोड़ा आयोडीन युक्त रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहिबा आपने थायराइड के बारे में अच्छी जानकारियां दी, हमारी महिला श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएगी ऐसा हम आशा करते हैं। आप स्टूडियो में आए, अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे महिलाओं में थायराइड की समस्या विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर रीना कुमारी और उनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी राजेश कुमार। रात का समय पर चांद जरा बेगाना सा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम चांद को तो रात में याद करते ही हैं, तो क्यों ना एक खूबसूरत सा गीत हम सुन लें। फिल्म है फना, आवाज है शान और कैलाश खेर की।

श्रोता दोस्तों, इस खूबसूरत गीत को हम पूरा आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है और वक्त का ये इशारा है कि हमें आज आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी रेडियो दोस्त जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।

साप्ताहिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी अभी आपने सुना। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। फिल्म संगीत

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं

0: मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली। अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए समीर का लिखा गीत। संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है। फिल्म है हम हैं राही प्यार के।

राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की थी।

शब्द रचना समीर की, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का, अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में आपने सुना फिल्म दीवाना का गीत। गौहर कानपुरी के बोल हैं अनु मलिक का संगीत। बाजीगर फिल्म का गीत लीजिए सुनिए विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में।

सुनिधि चौहान और गायत्री अय्यर की आवाज़ों में आपने सुना जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत विशाल शेखर का था। फिल्म थी हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। आरजू फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावना है। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से

0: द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की।

0: सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने

0: फाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busedi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। एक लड़का एक लड़की, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने, आवाज़ें कुमार सानू और साधना सरगम की हैं।

शब्द रचना समीर की, संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का, मृत्युदाता फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की थी। फिल्म जीत में हम

जीत फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल थे समीर के, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। जीना मरना तेरे संग इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके तहत आइए आज सुनते हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान। राग है मारू बिहाग।

राग मारू विहाग में अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादन। कलाकार थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान। इसके साथ ही हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजे हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30

बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।